वरस्मरणं गोविंदा हरि ओं मबो पात समस्त जगद्वार श्री परमेश्वर प्रस्यत्तम सोवने मोरदेवा वायस्यामा सुवरिरो सुमनक्षत्रः शुभकारण शुभ विशेषायां प्रार्थना।

ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, नानाविध परिमल पुष्पांजलिम्।

चत्वां पायवस्तु भायवस्तरे वो वस्य विदाम प्रार्पयदु श्रेष्ठरर्मय कर्मणे हरि ओं हरि ओं अग्नहाय हि वेदगे।

नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम् गोविंद। ओम नमो वात समस्त दुरिद जगद्वार श्री हि परमेश्वरः। प्रस्यत्तम सोमने मुहूर्तवाहवाय श्याम सुपरिदो सुमनक्षत्र स्वकारण स्वविशेषायां ब्रह्म मुहूर्ताय भोजं कर्षकर्ण मानस्य अस्य देवस्य महाविष्णुः।

कुबेराय महाराजाय नमः सर्वत्र गोविंद नाम संगरदनम गोविंदा गोविंदा गोपिका जे वरस्वरनम गोविंदा

लक्ष्म्यै नमः ओं वराद लक्ष्म्यै नमः ओं संदान लक्ष्म्यै नमः ओं कुबेराय लक्ष्म्यै नमः ओं अस्तलक्ष्म्यै नमः नाना विध परिमल पुष्पांजलिं समर्पयामि ओं हिरण्यवरुणां हिरणीं सुवर्णत्रजस्रज

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: MBC रेडियो, योर म्यूजिक कंपेनियन।

0: संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको अभी।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। कल घोंगुप के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की दिशा में एकत्र हुए। ग्राम परिषद ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। स्थिति से अवगत होने के बाद भूमि एवं आवास मंत्री शकील मोहम्मद परिषद के सदस्यों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर जाने वाले हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को रिजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है। सुबह के 9:30 से लेकर दोपहर के 1:00 तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। यह इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 व 30 अप्रैल तक आयोजित पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपए जुटाए गए थे। राष्ट्रीय सभा में क्रियोल मॉरिशियन को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने की के लिए गठित कमिटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है। सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टविस के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@gov.mu.org पर भेजे जा सकते हैं। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के पास आग और काले धुएं का बड़ा गुबार दिखा। सऊदी ने इस बात की पुष्टि की है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार सुबह राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिसाइल को रास्ते पर ही रोक दिया। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम पर पाया जाने वाला एक जोरदार एंटी साइक्लोन हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा सिवाय दक्षिणी ढलानों पर हल्की सी बारिश होगी। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और धूप खिली रहेगी। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उधर तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:01 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 6:05 पर।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

आराम हो जाना, उसे आराम बना देना, इंसान की ऐसी अच्छी मौत हो कि उसे दुनिया की हर मुश्किल से और हर तकलीफ से, हर शर से निजात मिल जाए। ये वो अहम बातें हैं जो अल्लाह जल्ल मजलहू की दस्ते कुदरत में है। इसलिए हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि हम अल्लाह से अपने दीन और अकायद की इस्लाह की दुआ मांगें, अपने दुनिया की इस्लाह और सुधार की दुआ मांगें और आखिरत की इस्लाह की दुआ मांगें, और ये दुआ मांगें कि दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी में, हमारे नेकियों में इजाफा हो, और ये कि वो हमारी मौत को हर शर से राहत बना दे, आराम बना दे। तो इन बातों के लिए हमें अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करना है। यही औलिया का सबक है, यही तसव्वुफ है। हुज़ूर ग़ौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही तालीम दी, अकायद की इस्लाह की, आखिरत की, दुनिया की इस्लाह की, और सुबह शाम लोगों को नेकियों में लगाया, वज़ाइफ दिए, औरात दिए, मुख्तलिफ़ इबादात की सूरत में, मुख्तलिफ़ रियाजात और मुजाहदात की सूरत में लोगों के खैर में दिन ब दिन इजाफे का सबब बने। और ऐसी तालीमात दी आपने कि अगर उस पर इंसान चले तो उसकी मौत यकीनन हर शर से उसके लिए आराम और सुकून का बायस बनेगी। इसलिए हुजूर सलाम ने अपनी उम्मत को एक बहुत ही जामे दुआ सिखाई, जिसमें अकीदे की इस्लाह है, दीन की इस्लाह है, दुनिया की आखिरत की इस्लाह है, जिसमें हर दिन नेकियों में इजाफा और उसकी तलब है, और मौत राहत की मौत है। चुनाचे हदीस पाक में है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अल्लाहुम अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मत अमरी। सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं कि हुज़ूर ने इन कलिमात के साथ दुआ की, आप करते थे इन कलिमात से दुआ कि अल्लाह मेरे लिए मेरे दीन को दुरुस्त कर दे, जो मेरे मामलात के बचाव का ज़रिया है। व असलिह ली दुनियाया अल्लतीफ़ीहा महाशी, और मेरे लिए दुनिया की इस्लाह फरमा जो मेरे माश का ज़रिया है। व असलिह ली आखिरती अल्लतीफ़ीहा मादी, और मेरे लिए आखिरत को ठीक कर दे जिसकी तरफ मुझे लौट कर जाना है, पलट कर जाना है। वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फ़ी कुल्ली खैर, और मेरी ज़िंदगी को आमाले सालिहा के लिए ज़्यादा कर। वजअलिल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर, और मौत को मेरे लिए हर शर से बाएस आराम बना दे। यही दुआ हम अपने लिए और पूरी उम्मा के लिए मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा असलिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मत अमरी, वअस्लिह ली दुनियाया अल्लती फ़ीहा माआशी, वअस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा माआदी, वजअलिल हयाता ज़ियादतन ली फ़ी कुल्ली खैर, वजअलिल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर।

0: वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।
1: अभी अभी आपने जामे मस्जिद पोटलिस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामर बरकात हुमुलालिया का ये बयान सुना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें इस बयान से इबरत पकड़ने की तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। सामिन मोहतरम, मनकूल है कि हज़रत सैदुना शेख इस्माइल रहमतुल्लाह के पास खजूर के दो दरख्त थे। कई साल से उनमें फल नहीं आया था। एक मरतबा हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह वहाँ तशरीफ़ ले गए। आपने एक दरख्त के नीचे वज़ू फरमाया और दूसरे दरख्त के नीचे दो रकत नमाज अदा फरमाई। रिवायत के मुताबिक आपकी इस हाज़िरी और दुआ की बरकत से दोनों दरख्त अचानक सरसब्ज़ हो गए और उसी हफ्ते उनमें खजूरें ज़ाहिर हो गईं। हालांकि उस वक्त खजूर का मौसम भी नहीं था। उन खजूरों में से कुछ आपकी खिदमत में पेश की गईं। आपने उन्हें तनावल फरमा कर दुआ फरमाई तो हज़रत शेख इस्माइल रहमतुल्लाह की ज़मीन, गंदुम, माल और जानवरों में भी बरकत ज़ाहिर हुई। ये वाक़या इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दुआओं को कबूल फरमा कर अपनी कुदरत की निशानियाँ ज़ाहिर फरमा।

और मनकूल हिकायत में आता है कि कुछ लोगों ने हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को आजमाने के इरादे से एक टोकरी पेश की। टोकरी को बंद रखा गया था और अंदर मौजूद चीज़ किसी को मालूम नहीं थी। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने टोकरी खोले बगैर फरमाया कि इसमें एक सेहतमंद बच्चा मौजूद है। जब टोकरी खोली गई तो रिवायत के मुताबिक वाकई इसमें एक बच्चा मौजूद था जो सेहतमंद था और उठकर चलने लगा। इससे ये सबक लिया जा सकता है कि औलिया कराम के बारे में बदगुमानी और उनकी आजमाइश के इरादे से बचना चाहिए। सामिन कराम, हमें औलिया कराम की करामात सुनकर सिर्फ हैरान नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी ज़िंदगी से सबक भी हासिल करना चाहिए। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में तक्वा, नमाज, कुरान, इल्म, तौबा और अल्लाह ताला की इताअत को बुनियादी मकाम हासिल था। करामत का असल मकसद इंसान को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो करना है। हमें हराम माल से बचना, दूसरों के हुकूक अदा करना और अपनी ज़िंदगी को नेकी से आरास्ता करना चाहिए। अगर हम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत का दावा करते हैं तो उनके अच्छे आमाल और अखलाक को अपनी ज़िंदगी में अख्तियार करें। सिर्फ करामात सुनना काफ़ी नहीं बल्कि उनसे अमली सबक लेना भी ज़रूरी है। सामिन कराम, आइए सबाल खैर के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

94.6, 98.2 તમે સાંભળી રહ્યા છો RM3 રેડિયો. દરરોજ 10 થી 11

94.6, 98.2 તમે સાંભળી રહ્યા છો RM3 રેડિયો.

94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति। समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजो प्रणाम। इस समय आप भक्ति में शक्ति कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन की लहरों पर सुन रहे हैं। श्रोताओं, आइए श्री गणेश करते हैं।

श्रोताओं, हिंदू धर्म की परंपरा में मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं होता है, बल्कि ये अनेक पवित्र रिश्ते, कर्तव्य और ऋणों से जुड़ा हुआ है। इनमें देव ऋण और पितृ ऋण का विशेष महत्व बताया गया है। ये ऋण हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि प्रकृति, ईश्वर, हमारे पूर्वजों और अनेक अदृश्य कृपाओं का फल है। देव ऋण का अर्थ है देवताओं और ईश्वरीय शक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य। सूर्य हमें रोशनी और ऊर्जा देते हैं, वायु हमें प्राण देते हैं, वर्षा जल प्रदान करती है, पृथ्वी हमें अन्न और जीवन का आधार देती है। हिंदू परंपरा में इन प्राकृतिक और दैविक शक्तियों को देव स्वरूप माना गया है। इसलिए देव ऋण को चुकाने का अर्थ केवल पूजा पाठ करना ही नहीं, बल्कि प्रकृति का सम्मान करना, जल का संरक्षण करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, जीव जंतुओं के प्रति दया रखना और अपने कर्मों को पवित्र बनाना भी है।

जब हम श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हैं, दिया जलाते हैं, मंत्र जपते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में सत्य, दया और सेवा को स्थान देते हैं, तब हम अपनी तरफ से देव ऋण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भक्ति का असली अर्थ भी यही है, जो कुछ हमें मिला उसके लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद और समर्पण का भाव रखना। इस तरह पितृ ऋण भी हमारे जीवन का एक पवित्र कर्तव्य है। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और पूर्वजों ने भी जीवन, संस्कार, परंपरा और विरासत हमें दी, उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही पितृ ऋण की भावना है। आज जो हम हैं उसमें हमारे पूर्वजों के त्याग, परिश्रम और संस्कारों का भी योगदान है।

त्रिरेन का सम्मान केवल किसी एक दिन या किसी विशेष क्रिया तक सीमित नहीं होना चाहिए श्रोताओं। अपने माता पिता की सेवा करना, परिवार की मर्यादा और अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाना, जरूरतमंदों की सहायता करना और अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करना भी पितृऋण की भावना को जीवित रखता है। जग में

परंपरा में श्रद्धा और तर्पण के माध्यम से पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट किया जाता है। विशेष रूप से पितृपक्ष के समय लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसका मूल भाव है श्रद्धा, कृतज्ञता और अपने वंश के प्रति सम्मान। हमें ये भी समझना चाहिए कि ऋण का अर्थ हमेशा बोझ नहीं होता है। ये एक सुंदर याद दिहानी है कि जीवन में हमें जो मिला है उसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखना। ईश्वर की कृपा मिली है तो सेवा करें, प्रकृति ने दिया है तो उसकी रक्षा करें, पूर्वजों ने संस्कार दिए हैं तो उन्हें अपने अच्छे कर्मों से आगे बढ़ाएं। देव ऋण हमें ईश्वर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाता है और पितृ ऋण हमें अपने पूर्वजों और परिवार के प्रति श्रद्धा सिखाता है।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। राष्ट्रीय सभा में खेल मोगिसिया को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने के लिए गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है। सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टविस के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@gov.mu.org पर भेजे जा सकते हैं। ये परामर्श समिति को अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले विभिन्न राय एकत्र करने की अनुमति देगा। इस रविवार 20 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व सफाई दिवस यानी कि वर्ल्ड क्लीनअप डे के अवसर पर कचरे और अवैध डंपिंग के खिलाफ संघर्ष करने की दिशा में मॉरिशस में कई पहल की जा रही हैं। साफ सफाई अभियानों से आगे बढ़कर गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से आदतों में एक स्थायी बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को गजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है। सुबह के 9:30 से दोपहर के 1:00 तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। यह इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपए जुटाए गए थे। मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी के दरवाजे पार करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। चूना, स्टारफिश, दोगाद हमारी कई महासागरीय मछलियों को आज कुछ यूरोपीय मंडियों जिनमें इंग्लैंड भी शामिल है उनके द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है। ये इस क्षेत्र के लिए एक चिंताजनक स्थिति बन गई है और ये मॉरिशस को नए बाजारों की तलाश करने और विशेष रूप से एशिया की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। एक्वाकल्चर की प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से भूमध्य सागर में चूना मछली पालन इन कठिनाइयों का कारण बनने वाले कारकों में से एक बताई जा रही है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका ने इलाके में मौजूद अपने दूतावासों और नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने लोगों से ज्यादा सतर्क रहने को कहा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना कैंप डेविड दौरा एक दिन पहले खत्म कर शनिवार शाम को व्हाइट हाउस लौट आए। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया इस

0: के लिए धन्यवाद जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार पिछिवेजे ब्रांच रोड सैपिया में 79 साल की 79 years old की मिसिस बीबी आशा जादू पैदाशी नाम इस्माइल और जिन्हें सब लोग छोटी के नाम से भी जानते थे वो इंतकाल कर गई है उनका जनाजा आज शाम के 5 बजे उन्हीं के मकान पिचिवेजे ब्रांच रोड सैंपिया से निकाल कर दफनाने के लिए सैकुंसन सैंपिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 5 PM Le coup des veaux, petit verger Saint-Pierre, mais la coup des veaux, disons la coup des veaux, petit verger Saint-Pierre, mais et qui en be salke, 91 years old, que Shri Sukhdev Usaini, jinhe sab log Basdev ke naam se bhi jante the, unki mrityu ho gayi hai, unki arthi, aaj dopahar ke 2 baje, unhi ke ghar la coup des veaux. पिचिवेजे सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंसन सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM बुनेड रोड विच्यमिल थ्रियोले में 60 साल की 60 years old की श्रीमती सरस्वती मुचिया पैदाशी नाम तानी और जिन्हें सब लोग बानिता के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज सपेर के 3 बजे उनके बेटे श्री वेदाशय सूरज मुच्चा के घर बुनेड रोड विच्यमिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यमिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM इन सभी शुक्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: बारह बजकर बारह मिनट आज है संडे का दिन 20 सितंबर 2026। जय गुड आफ्टरनून आप सभी को, प्रणाम आपको, नमस्कार और एक प्यार भरा सलाम आप सभी को। आप सुन रहे हैं एमबीसी और एम फ्री रेडियो मनोरंजन और वक्त है दोपहर के बारह बजकर बारह मिनट यानी वीकेंड का वो खूबसूरत वक्त जब सुबह की भागदौड़ थोड़ी थम जाती है, घर में खुशियां की महफिल सजती हैं और दिल कहता है बस अब थोड़ा सुकून हो, थोड़ी सी मस्ती और कुछ एवरग्रीन मेलोडीज हो। तो दोस्तों चलिए आज फिर निकल पड़ते हैं यादों, सुरों और एहसासों से भरे एक खूबसूरत सफर पर। यह है सुहाना सफर और मैं हूं देविना। और आज के इस सफर में अभी से लेकर दो बजे तक क्या होने वाला है हम बताएंगे आपको। अभी आपने सुना फिल्म बाबू से लिया गया एक बहुत ही खास गाना लता जी की आवाज में, और आपको याद है ये गाना किस पर पिक्चराइज था। बस कोशिश रहेगी कि आपके संडे को बना दें थोड़ा और म्यूजिकल, थोड़ा और मैजिक।

कर और बहुत सारा मनोरंजन से भरपूर। जहां हम लेकर आए हैं एक ऐसी अदाकारा की कहानी जिनकी खूबसूरती में थी सादगी, जिनकी मुस्कुराहट में थी मासूमियत और जिनकी आंखों में था एक अलग ही सिनेमैटिक जादू। जी हां दोस्तों, आज का सुहाना सफर है एक खूबसूरत एक्ट्रेस के नाम राति अग्निहोत्री। एक ऐसा नाम जो 1980s के हिंदी सिनेमा की यादों में आज भी अपनी खास जगह रखता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले जो दो घंटे हैं ना होंगे रति जी के फिल्मी सफ़र के बारे में, उनके यादगार किरदार, उनकी खूबसूरत स्क्रीन प्रेजेंस और उनसे जुड़े एवरग्रीन गीत। तो चलिए ये जो अगला गाना है ना, हम कैसे भूले एक दूजे के लिए, इस फिल्म के लिए उनको बहुत ही लोगों ने पसंद किया कमल हासन के साथ। और ये जो गाना है SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में, साथ में है लता जी और हमें मैसेज आया है यहाँ पर रोजबेल की ओर जा रहे हैं हमारे जी दोस्त, तो देखते हैं कौन है। हाँ जी, विमला जी हैं, भावना, अक्षय, अवि, करिश्मा और सोना, साथ में है करुणा। सो बस हमें सुन रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। सो एंजॉय योर सफ़र रोजबेल की ओर और साथ में हमसे जुड़े रहिए RM Free रेडियो मनोरंजन पर।

मेरा नाम सलमा नहीं बल्कि दीविना है और आप सुन रहे हैं ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन। मेरा नाम सलमा, ये था फ्रॉम द मूवी आपके साथ। और आज हम खास बात कर रहे हैं द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड रति अग्निहोत्री पर। कुछ गाने हम बजा रहे हैं साथ में। हाँ जी, सो बस आज आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है संडे? कहीं कहीं पर धूप है, कड़ी धूप है, मौसम सुहाना है। कहीं कहीं पर कुछ बस मौसम हवादार है, बस बादल छाए हुए हैं। आप जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हैं, स्टे सेफ, ड्राइव केयरफुली एंड एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल संडे। रति अग्निहोत्री, एक ऐसा नाम जो 1980s के हिंदी सिनेमा की यादों में आज भी अपनी खास जगह रखता है। कितनी खूबसूरत थी वो ना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो अगले गाने जो हम बजाने वाले हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल से गाने हैं आज हमारे प्लेलिस्ट में। तो रति जी की फिल्मी सफ़र, उनके यादगार किरदार, उनकी खूबसूरत स्क्रीन प्रेजेंस और उनसे जुड़े एवरग्रीन गीत। सो रति अग्निहोत्री के नाम के साथ याद आता है वो दौर जब फिल्मी गीतों में मेलोडी थी, कहानियों में रोमांस था और स्क्रीन पर सितारों की एक अलग ही चमक। तो चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। और ये जो गाना है, आई वॉज श्योर कि आप सभी लोग जो है ना, एक दूजे के लिए जो गाने हैं, सभी गाने हिट हुए। तो बस एक और गाना इसी फिल्म का, और ये गाना जाएगा रिव्या जोगाबा की प्यारी सी माला जी के लिए, और साथ में उनकी जो प्यारी बहू हैं किरण, बेटा है केविन, कनिष्क, अनिल, कबीर, सत्यम और शिव के लिए, और जितने लोग इस गाने के दीवाने हैं, बस ये आपके नाम। लता जी, SP बालासुब्रमण्यम, रति थी इस फिल्म में, साथ में कमल हसन।

जा अब के बरस से ये जो गाना था ना आशा जी की आवाज में, और ये जो गाना है स्पेशली हेलो टू आर एच कपिला जी, वो है वेटरन इंडियन एयर फोर्स।

आपको सल्यूट है कपिला जी, और आपने बंदीनी वाला गाना सुनने की मांग की थी, सो ये था आपके लिए। आप है जलंधर पंजाब इंडिया से, सो आप भी हमारा साथ दे रहे हैं इंडिया से, सो आपको ढेर सारा प्यार है आपके परिवार के लिए, आपके लिए भी, और ऐसे ही आप कनेक्टेड होए और एम फ्री रेडियो मनोरंजन से। वैसे हमारा जो आज का जो थीम है रति अग्निहोत्री है, मगर एक दो जो हमारे जो खास दोस्त होते हैं ना, वे मांग करते हैं एक दो गानों की अलग से, तो हम कोशिश करते हैं बजाने की, मगर जब तक हो सके तो रति जी पर पिक्चराइज गाने ही हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक दो गाने आएंगे अलग से, सो बस ये गाना था आपके लिए कपिला जी। ऐसे में एक और गाना हम चलाएंगे, इसके बाद हम रति अग्निहोत्री पर गाने चलाने वाले हैं। फिलहाल शारदा मूवी का गाना है आशा जी की आवाज़ में।

जिसकी मांग ये है ग्रैंड ग्रुप की, हमारी जो प्यारी सी श्यामा जी हैं, आपको नमस्कार एक बार फिर से। तो श्यामा रघुनंदन जी ग्रैंड ग्रुप से हैं और इस गाने की मांग कर रही हैं, खास तौर पर अपने जो भाई साहब हैं जयप्रकाश, आप उनकी भाभी हैं और साथ में केशव हैं, युधिष हैं और उनकी सहेलियां हैं वीना रामफोल, नंदिनी ओकलू और विश्वानी दुखी। साथ में खास तौर पर आई हुई है बेल्जियम से उनकी जो प्यारी बहन है विजयंती जी, आपका वेलकम है मॉरिशस में। और खास तौर पर हमारे लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि कहती हैं संडे को हम आ जाती हैं लहरा कर बरका कर आपके इस संडे को खुशबुदार बनाने के लिए। थैंक यू श्यामा जी, बस हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपका जो संदेह है ना उसको खास बनाए, उसको हैप्पी बनाए। तो बस ये गाना आपके लिए श्यामा जी, और एंजॉय इट।

0: RM3 Radio.
1: जय शर्माने की घड़ी नहीं आई है, गाने की घड़ी आई है, साथ में नाचने की घड़ी आई है और साथ में आराम करने की और हमें सुनने की। और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर देवीना का साथ है अभी से लेकर 3 बजे तक। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2 बजे के बाद हम चलाते हैं 90s वाले स्वीट स्वीट से गाने। और आज हमने सुना 2 बजे के बाद हम बजाने वाले हैं कुछ ऐसे गाने जो रियल लाइफ और रियल लाइफ के जो जोड़ीदार हैं। जैसे रियल लाइफ में भी वे पति पत्नी हैं और साथ में ऑन स्क्रीन भी उन्होंने एक साथ काम किया। सो ऐसे जो कलाकार हैं उन पर एक दो गाने हम चलाने वाले हैं। फिलहाल 12 बजे से हम चला रहे हैं आपके कुछ मांगे और रति अग्निहोत्री पर पिक्चराइज कुछ गाने। तो आपके दिल में कुछ होता है ऐसे गाने सुनकर? बिल्कुल होता होगा। हमारे में दिल में कुछ कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और ऐसे में बॉक्सर मूवी का गाना सुनना चाहते हैं हमारे नवीन भाई मोटाई ब्लॉन्ड से आशा जी की आवाज में, साथ में किशोर दा। वैसे रति अग्निहोत्री की बात हुई तो रति अग्निहोत्री का जन्म बरेली में हुआ और उनका बचपन और परवरिश मुंबई और चेन्नई से जुड़ी रही। एक्टिंग की दुनिया में उनकी एंट्री तमिल सिनेमा से हुई और फिर हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक खास बात यह थी, नाजुक सी खूबसूरती, ग्रेसफुल एक्सप्रेशंस और एक नेचुरल चार्म। उनकी फिल्मी जर्नी हमें एक और दौर में ले जाती हैं जहां हीरोइंस की अदा, उनकी डायलॉग डिलीवरी और सॉन्ग्स में उनकी प्रेजेंस फिल्म की कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा होती है। तो बस ऐसे मैं ये गाना आपके लिए, नवीन जी जो आशा भोसले की ज़बरदस्त गाने की मांग करते हैं, जो गाने हम बार बार नहीं सुनते हैं मगर बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये जो गाना है ना एक्चुअली हमारे प्लेलिस्ट में था ही, तो मितुंडा और साथ में रति जी पर पिक्चराइज बक्सर मूवी का गाना आपके लिए नवीन जी।

जॉनी आई लव यू। हाँ जी, ये है मूवी का नाम और इस गाने की मांग की है यहाँ पर है कल्याणी जी, ट्रियोली से हैं और सभी को कह रही हैं नाइस संडे। और कल्याणी जी, ये आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। और ये गाना हमें ले जाएगा 1 बजे के समाचार की ओर।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से। पूजा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। हर उस अपराध के बाद जो पूरे देश को झकझोर देता है, मृत्यु दंड को लेकर बहस फिर से शुरू होती जाती है। गुस्सा, दोबारा अपराध किए जाने का डर या अपराधियों को और कड़ी सजा देने की इच्छा मृत्यु दंड को फिर से लागू करने की मांग को बढ़ावा देती है। लेकिन इस कठोर कदम के पीछे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं। अपराधी के पुनर्वास का सवाल, न्यायिक गलती की संभावना और ऐसी व्यवस्था की सीमाएं जो कभी भी पूरी तरह अचूक नहीं हो सकती है। आज सुबह सुब्रमण्य भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया और उनकी कविताओं का पाठ किया गया। ये कार्यक्रम प्लेन वे अत्य में लगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू महाजन संगम की पहल पर किया गया। ये संस्था तमिल संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करती है और सैंकवा स्थित कैलासों कोविल का प्रबंधन भी करती हैं। सुब्रमण्य भारती एक भारतीय पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें आधुनिक तमिल साहित्य एक शैली का जनक माना जाता है। विदेश में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं। जी हां, मॉस्को में रात भर हुए बड़े पैमाने के यूक्रेनी ड्रोन हमले की जानकारी वहां के गवर्नर आंद्रे वोरोबियेव ने दी है। मॉस्को को मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा है कि राजधानी की ओर बढ़ रहे 450 ड्रोन को मार गिराया गया है। उन्होंने इसे अभूतपूर्व हमला बताया है। एक तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा और कई घरों में आग लग गई। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। पिची वेजे ब्रांच रोड सैंपिया में, पिची वेजे ब्रांच रोड सैंपिया में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड बीबी आशा जादू पैदाशी नाम इस्माइल और जिन्हें लोग छोटी नाम से जानते थे इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज शाम 5 बजे इनके मकान पिची वेजे ब्रांच रोड सैंपिया से उठाकर दफनाने के लिए सैकोस्टॉन सैंपिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी हमदर्दी है।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

जहाँ कोई नहीं आप जैसा कोई नहीं, और ये था फ्रॉम द मूवी स्टार, और इस फिल्म में नजर आए थे कुमार गौरव, राजकिरण, साथ में द ब्यूटीफुल रति अग्निहोत्री. इन द बिगिनिंग फिल्म इतनी चली नहीं, बट द ऑल द सॉन्ग्स वर वंडरफुल. आज भी ये गाने जैसे कहते हैं मास्टरपीस ऑफ द इंडियन सिनेमा. और इसमें खास बात ये है कि सभी गानों में आवाज़ थी द ब्यूटीफुल, द लेजेंडरी नाज़िया हसन की, और साथ में उनके भाई ज़ोहैब हसन. और इस फिल्म का एल्बम जो है बहुत बहुत बिके, और आज भी लोग इन गानों की फरमाइश करते हैं, इन गानों को गाते हैं. सो बस आज के लिए इसमें हम जुड़ रहे हैं नाज़िया हसन की आवाज़ में एक दो गाने, और बाद में तो रति अग्निहोत्री पर पिक्चराइज कुछ गाने हम चलाने वाले हैं आज भी, और साथ में एक दो जो आपके फरमाइशें आई हैं अलग से, ये भी बजाएंगे समय समय पर. तो हो चुका है 1:08, संडे आफ्टरनून, लेजी संडे शो, सुहाना सफर आप सबों के लिए. अब जबरदस्त मूवी का गाना कुमार नहीं है, किशोर कुमार साहब की आवाज में, और जब चाहा यारा तुमने, और इसमें नजर आए थे रति जी. तो बस इस गाने की मांग की है गांव ग्रुप की विमला जी, और ये गाना खास तौर पर उनकी बेटी रोशिका के लिए.

जहाँ अनीता जोफी कॉन्फ्लैक हम आपको नहीं भूले, तो बस स्टार वाला गाना ये आपके लिए था। और साथ में पति राज भी थे, अंतिश अंकुश बहुमनीषा आशिमा पोती हिमेशा आधिया पोते अंश और सभी रेडियो मनोरंजन टीम के लिए थैंक यू।

नई रोशनी मूवी का गाना था। मधुरी जी, अभी हमने आपका मैसेज पढ़ा तो आपके लिए ये गाना बजा दिया और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा। हैव ए नाइस संडे।

जहाँ 1:20 हुए हैं, संडे का दिन है 20 सितंबर 2026। हमेशा की तरह एवरी संडे हम आते हैं 12 बजे से 3 बजे तक सुहाना सफर प्रोग्राम, और कुछ ना कुछ एक कलाकार पर कुछ गाने चलाते हैं, और इन बिटवीन आपकी कुछ फरमाइश है, और साथ में 2 बजे के बाद हम चलाते हैं 90s और 2000 के गाने। सो बस अगर आपको कुछ रोमांटिक गाने सुनने हैं तो 3 बजे तक हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा, और थोड़ा रोमांस, थोड़ी नॉस्टैल्जिया और ढेर सारी मेलोडी होता है हमेशा और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। और आप बस रिलैक्स कीजिए, संडे आफ्टरनून है, संडे का मूड एंजॉय कीजिए और म्यूज़िक को दिल तक पहुंचने दीजिए। वैसे रति अग्निहोत्री की बात करें तो अपने करियर में रोमांटिक फिल्म्स के साथ साथ अलग अलग जॉ में भी काम किया। उनकी फिल्मोग्राफी में फ़र्ज़ की जंग, द वाइफ, कुली, आपके साथ, एक दूजे के लिए और बहुत सारे गाने फिल्में हैं, बॉक्सर। तो बस उनकी खासियत थी कि वो स्क्रीन पर सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं आती थी, बल्कि अपने एक्सप्रेशंस और इमोशनल परफॉर्मेंसेस से भी ऑडियंस से कनेक्ट करती थी, और शायद इसीलिए रति अग्निहोत्री का नाम आज भी बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया की बातों में प्यार से लिया जाता है। तो अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। देखो इधर, फिल्म है बॉक्सर, किशोरदा की आवाज़ में, और ये गाता है नमस्ते जी, ये है वीना फ्रॉम नुवेल फ्रांस, इस गाने की मांग की है। वीना जी आप इसको एंजॉय कीजिए। वीना जी, मैं हूँ देवीना।

प्यारा सा गाना है फ्रॉम द मूवी एक दूजे के लिए। रति की बात हो, रति अग्निहोत्री की बात हो और ये गाना न चले ये हो नहीं सकता मेरे दोस्त। और ये गाना जाएगा खास तौर पर, बहुत बड़ी फैन है रति जी की, ये है शुमार गोयन की किरण विदेशी जी, अगर वे सुन रही हैं तो हाय आपको, और ये मांग रही हैं अपने पूरे परिवार के लिए और खास तौर पर बेलोंग गवर्नमेंट स्कूल के सभी स्टाफ के लिए ये गाना।

नमस्कार जी, ये हैं अनीता मोहम्मद अलबेर, आपको भी नमस्कार। और अनीता ये गाना मांग रही हैं करुणा, अमृता और सभी दोस्तों के लिए। अमित कुमार, लता जी।

जहाँ दो 1:43 ऑलमोस्ट हो चुके हैं और यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट है। यहाँ पर शादी वाला माहौल है, ऑफ कोर्स बहुत लोग जो जा रहे हैं शादी में सज ठज के, और वाकई में कितना पावन होता है ना शादी में जाना, लोगों से मिलना, खुशी का माहौल होता है। और ऐसे में बाबू अनटवा जी कटुबोन से हैं, उनके जो बेटे हैं विदेश, उनके दोस्त की बेटी की शादी है वैसे, तो बेस्ट विशेस परिवार को, पूरे परिवार को। और विदेश जी जा रहे हैं शादी में, और ऐसे में बाबू जी ने जो है पूरे अनटवा परिवार की ओर से बेस्ट विशेस भेजा है, और ये गाना उनके लिए है।

0: जी हाँ, ये प्यारा सा गाना, जी हाँ, हम इसमें नाम जोड़ते हैं, शामिल करते हैं इसमें ललिता कुशल ऑफ ट्रियोले और सुदेवी बहन, ज्ञानी छोटी दीदी, दादी प्रभावती, शुक्ला मौसी, हरीश भैया और आत्माराम भैया के लिए। ऑल्सो गोज टू शोभा, लालमाची से है, और एक्चुअली उन्हें ये गाना ज़्यादा पसंद था, तेरे मेरे बीच में, ये गाना आपके लिए था खास तौर पर हमारे लिए, थैंक यू, और सभी के लिए।
1: अकेली,
0: जी हाँ, और इसमें हम नाम जोड़ते हैं और सम ट्रैक्स ने की भी टप, तो रॉकी वाला गाना हम नहीं चला पाएंगे, तो डारेन श्वेता रविश प्रीशा लविशा रापाडू फैमिली और वैष्णो, ये गाना आप सबों के लिए।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ। आपको नमस्कार पूजा।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार। हर उस अपराध के बाद जो पूरे देश को झकझोर देता है, मृत्यु दंड को लेकर बहस फिर से शुरू हुई है। गुस्सा दोबारा अपराध किए जाने का दरिया, अपराधियों को और कड़ी सजा देने की इच्छा मृत्यु दंड को फिर से लागू करने की मांग को बढ़ावा देती है। लेकिन इस कदम के पीछे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं। अपराधी के पुनर्वास का सवाल, न्यायिक गलती की संभावना और ऐसी व्यवस्था की सीमाएं जो कभी भी पूरी तरह अचूक नहीं हो सकती। आज सुबह सुब्रमण्य भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया और उनकी कविताओं का पाठ किया गया। ये कार्यक्रम प्लेनवेयर्थ में लगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू महाजन संगम की पहल पर किया गया। ये संस्था तमिल संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करती है और सैखवा स्थित कैलासों कोविल का प्रबंधन भी करती है। सुब्रमण्य भारती एक भारतीय पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें आधुनिक तमिल साहित्य शैली का जनक माना जाता है। मौवाकवा जलाशय का जलस्तर गंभीर स्तर से नीचे चला गया है। इसी जलाशय के किनारे आर्यसभा मॉरिशस ने 12 घंटे के लिए एक महायज्ञ आयोजित किया, मतलब एक वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मंत्र उच्चारण और आहुतियों के साथ पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए प्रार्थना की जा रही है। विदेश में मॉस्को में रात भर हुए बड़े पैमाने के यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मॉस्को के मेयर ने कहा है कि राजधानी की ओर बढ़ रहे 450 ड्रोन को मार गिराया गया। उन्होंने इसे अभूतपूर्व हमला बताया है। एक तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा और कई घरों में आग लग गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है, ने पुष्टि की है कि केव ने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रूसी तेल प्रतिष्ठान और लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया। उनके अनुसार ये प्रतिष्ठान है जो युद्ध मशीन को बनाए रखने के लिए अरबों डॉलर उपलब्ध कराते हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: बेल्टेयर रोड हाइलैंड्स फिनिक्स में, बेल्टेयर रोड हाइलैंड्स फिनिक्स में 88 साल के 88 years old शिकेश्वर बसावन जिन्हें लोग केसो नाम से ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनके बेटे विकास बसावन के मकान बेल्टेयर रोड हाइलैंड्स फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। पिची वेजे ब्रांच रोड सैंपियम में 79 साल की 79 years old बीबी आशा जादू पैदाशी नामी इजमायल और जिन्हें लोग छोटी नाम से जानते थे इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज शाम 5 बजे इनके मकान पिची वेजे ब्रांच रोड सैंपिया से उठाकर दफनाने के लिए सैकोस्ता सैंपिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टूडे 5 PM। और पायों के रोड प्रोविडेंस का अच्छे मिलिटिया में 61 साल की 61 years old श्रीमती बिमला गुप्तर पैदाशी नाम रामभोजू और जिन्हें लोग कविता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सोमवार को सुबह 9 बजे इनके बेटे इरेश गुप्ता के मकान पायों के रोड प्रोविडेंस का अच्छे मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन काउं दिमास किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 9 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
3: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: दो बजकर 10 मिनट हुए हैं, संडे का दिन है 20 सितंबर 2024। देखते ही देखते हमारे दो घंटों का जो प्रोग्राम था ना वो खत्म हो चुका, और अब वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ सुहाना सफर प्रोग्राम देविना के साथ आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। और अब हम आपको ले चलेंगे 90s की दुनिया में, 2000 की दुनिया में, मिलेनियम की दुनिया में। आप हमारे साथ चलेंगे ना? आप जहां से भी हमें सुन रहे हैं तो हम आपका सभी से यही निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, और रोमांटिक गाने आपके लिए स्पेशली, और संडे का यह खूबसूरत वक्त, और आपके साथ हैं मोहब्बत यादों और 90s के उन एवरग्रीन नगमों का सफ़र। जी हाँ, सुहाना सफ़र प्रोग्राम में अब थोड़ा खास है आज, क्योंकि आज बात होगी उन जोड़ियों की जिन्हें हमने रियल लाइफ में प्यार करते देखा, यानी कि ऑन स्क्रीन, और रियल लाइफ में भी प्यार निभाते देखा। 90s का वो दौर जब प्यार में खत लिखे जाते थे, आंखों से बातें होती थी, और एक गाना पूरी लव स्टोरी कह देता था। तो चलिए यादों की उस सुनहरी गली में चलते हैं जहां अजय देवगन का जोल, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और ऐसी भी खूबसूरत जोड़ियों की बातें होंगी, और साथ होंगे 90s के रोमांटिक सॉन्ग्स। अभी आपने सुना प्यार तो होना ही था, इसमें नज़र आए थे फिल्म में अजय देवगन, साथ में उनकी जो धर्मपत्नी है काजोल। और उन्हीं अगर उनकी बात करें तो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री दिखाई देती है। असल जिंदगी में भी एक साथ जीवन का सफ़र उन्होंने तय किया, अजय देवगन और काजोल ने। 90s में काजोल की चुलबुली अदाएं और अजय की इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस, दोनों की जोड़ी ने दर्शकों को कई यादगार पल दिए, और फिर फिल्मी पर्दे से निकलकर ये रिश्ता रियल लाइफ तक पहुंचा। तो इस प्यारी जोड़ी की याद में सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक गाना, अजनबी मुझको इतना बता, प्यार तो होना ही था। जी हाँ, तो एंजॉय कीजिए 90s का वो सुहाना सफ़र, आप सबों के लिए ये प्यारा सा गाना।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: फिल्म है दिल क्या करे और इसमें नजर आए थे साथ में अजय देवगन और काजल देवगन और साथ में देखी थी महिमा चौधरी और इस फिल्म के गाने जबरदस्त रहे और ऑन स्क्रीन जोड़ी अजय देवगन काजल की प्रेम कहानी और इसमें भी प्रेम कहानी थी और ये गाना बहुत चला और ये गाना खास तौर पर हरीश बाबू बुब्बा सिंह के आपके लिए और आपके खास दोस्त के लिए।

एक्चुअली हम प्ले कर रहे हैं आप सभी के लिए उन जोरी कलाकारों की जो रियल लाइफ में और ऑन स्क्रीन में भी वे उनका लव स्टोरी था, बहुत मशहूर हुआ, सक्सेसफुल हुआ। और अभी हम बात कर रहे हैं काजोल देवगन और अजय देवगन पर। उनका केमिस्ट्री जो है फिल्मों में दिखता है और अब उनके बच्चे भी हैं। स्टिल उनका उनकी जो मूवी है साथ में बहुत चला और एक्चुअली हाल में उन्होंने एक साथ काम नहीं किया है, मगर जितनी फिल्मों में काम किया 90s के ज़माने में सभी फिल्म लोगों को पसंद आया। और अभी के लिए दिल क्या करे ही मूवी में ही एक ऐसा गाना है सुखविंदर सिंह साहब की आवाज़ में और साथ में है जसपिंदर नरूला, मैनू लगन लगी। और ये गाना खास तौर पर बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैसेज है, हाय दीविना, हाउ आर यू, मैं आई एम वेरी नाइस, आई एम गुड एंड यू। सो ये गाना स्पेशली हमारे टीम के लिए।

जी हाँ, ढाई अक्षर प्रेम का। और इसमें जोड़ीदार जो हैं रियल लाइफ के अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं इस फिल्म में नज़र आई थी और उनकी प्रेम कहानी उन्हीं दिनों शुरू हुआ था। और एक बेहद चर्चित रियल लाइफ कपल हैं वो। और रियल लाइफ में ऐश्वर्या की खूबसूरती और उनकी रोमांटिक स्क्रीन प्रेजेंस ने 90s को यादगार बनाया। मिस वर्ल्ड रही है। और अभिषेक बच्चन ठहरे बिग बी बच्चन साहब के सुपुत्र और उनकी एक बेटी है आराध्या। सो बस ये जोड़ी सलामत रहे। और ये तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। और उन्होंने सिनेमा प्रेमियों को खूब खुश किया अपने जो फिल्मों से। सो और आने वाले दिनों में भी वे करते रहें और उनको कहेंगे बेस्ट विशेस। तो इस मूवी में उनको बहुत लोगों ने पसंद किया, फिल्म ढाई अक्षर प्रेम का। उसी फिल्म का गाना आप सबों के लिए टाइटल सॉन्ग है, बस एंजॉय इट।

सुनीता जी हैं, शोभा जी हैं, और शोभा जी को ऐश और अभिषेक बच्चन की जोड़ी बहुत पसंद है, और ये खासतौर पर ये गाना शोभा जी, ये आपके लिए।

जहां अब याद करते हैं इसमें उस जोड़ी को जिन्हें हमने 90s में फिल्मों की दुनिया में देखा और बाद में रियल लाइफ में हस्बैंड और वाइफ के रूप में, अक्षय कुमार हमारे खिलाड़ी भैया और साथ में हमारे बाबू मोशाय की सुपुत्री ट्विंकल खन्ना। 90s में अक्षय कुमार रोमांटिक हीरोज की लिस्ट में खूब छाए रहे। उनकी फिल्मों के सॉन्ग का स्टाइल और वो चार्मिंग अंदाज सब कुछ अपने आप में एक एरा था। और ट्विंकल खन्ना की जो का जो डेब्यू था वो बरसात मूवी से हुआ था, वो 90s में बॉबी देओल के साथ। और इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया और बाद में उनकी फिल्म इतनी नहीं चली। और हम कैसे भूलें शाहरुख खान के साथ, किंग खान के साथ उन्होंने बादशाह मूवी में काम किया। और इंटरनेशनल खिलाड़ी, वैसे अक्षय कुमार साहब ने कमाल का एक्टिंग किया खिलाड़ी में, सबसे बड़ा खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी। और खिलाड़ी ने क्या किया, ट्विंकल खन्ना को अपने बस में कर लिया, उनसे शादी कर ली और उन्होंने एक साथ किया काम इंटरनेशनल खिलाड़ी में। और ये गाना उनकी याद में, जिस जब उनकी लव स्टोरी वो शुरू हुई थी, ये गाना आप कुमार सानू की आवाज़ में इसको एंजॉय कीजिए। ट्विंकल खन्ना और साथ में कुमार सानू साहब।

दिल का दर्द हो रहा है क्योंकि वक्त हो चुका है आपको छोड़ने का और 90s की मोहब्बत का ये सफ़र यही ख़त्म नहीं होता क्योंकि अच्छे सॉन्ग्स कभी पुराने नहीं होते मेरे दोस्त और सच्ची यादें कभी फेड नहीं होती। आप जहाँ भी हो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने किसी खास इंसान को आज एक बार ज़रूर कहिए आई लव यू। तुम मेरी ज़िंदगी का वो खूबसूरत गीत हो जिसे मैं बार बार सुनना चाहता हूँ। स्प्रेड लव, प्यार बांटते चलिए। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक और सुहाने सफ़र में एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक संगीत सुनिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे बाद आ रहे हैं अजय प्रताप सिंह लेकर ऐसा भी होता है, उनका साथ दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।

0: कम उठाए जाने के बावजूद कुछ लोग फिर भी यहाँ अपना कचरा फेंकने आ जाते हैं। इस स्थिति से आसपास के रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं, साथ ही इसे जमीन के मालिकों की जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हर उस अपराध के बाद जो पूरे देश को झकझोर देता है, मृत्यु दंड को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई है। गुस्सा, दोबारा अपराध किए जाने का डर और कड़ी सजा देने की इच्छा मृत्यु दंड को फिर से लागू करने की मांग को बढ़ावा देती है। इस कठोर कदम के पीछे कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं। अपराधी के पुनर्वास का सवाल, न्यायिक गलती की संभावना और ऐसी व्यवस्था की सीमाएँ जो कभी भी पूरी तरह चूक नहीं हो सकती। महोवाकुआ जलाशय का जल स्तर गंभीर स्तर से नीचे चला गया है। इसी जलाशय के किनारे आर्यसभा मॉरिशस ने 12 घंटों के लिए एक वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मंत्र उच्चारण और आहूतियों के साथ पूरे टापू में वर्षा की आपसी के लिए प्रार्थना की जा रही है। विदेश में मॉस्को में रात भर हुए बड़े पैमाने के यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि कीव ने इलाके में एक महत्वपूर्ण रूसी तेल प्रतिष्ठान और एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया है। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि कल शनिवार को कीव और सुमी क्षेत्रों में रूसी हमलों में 8 लोग मारे गए थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Petit Verger, Branch Road, Saint-Pierre में 79 साल की 79 years old बीबी आशा जादू, बीबी आशा जादू पैदाशी नाम इस्माइल और जिन्हें लोग छोटी नाम से जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम पाँच बजे इनके मकान पिची वैजे ब्रांच रोड सैंपिया से उठाकर दफनाने के लिए सैकोस्ता सैंपिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5 PM। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमारी हमदर्दी है।
1: You're listening to RM2, a radio
2: master. Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
3: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: ऐसा भी होता है on RM3.

यहां पर कौन किसको समझाए, यहां पर कोई समझना ही नहीं चाहता। हर कोई अपनी मनमानी पर तुला हुआ है। लगता है किसी को किसी की नसीहत अच्छी नहीं लगती। पता नहीं इंसान अपने आप को क्या समझता है। शायद वो समझते हैं कि वो सबसे बलवान है। बुद्धिमान और ज्ञानी होते हुए भी इंसान अपनी पतन की ओर जा रहा है। वो अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, म्यूजिक लवर्स, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आरएम फ्री एमबीसी आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन पर आपका स्वागत है। 94.6 98.2 FM पर प्रस्तुत है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम। ऐसा भी होता है अभी से 4 बजे तक, और 4 बजे होगा गजलों का प्रोग्राम हमारी पेशकश में 4 से 5 बजे। सो 2 घंटे का प्रोग्राम होगा आज। और अभी इस पहले हिस्से में हम लाए हैं चंद अद्भुत

सनसनी खबरें जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे आपका जनरल नॉलेज तो बढ़ेगा पर आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस कार्यक्रम में खोज कार्य रिसर्च वर्क के जरिए हम ये प्रोग्राम अब तक पहुंचाते हैं। हर संडे को वीकली प्रोग्राम साप्ताहिक प्रोग्राम ऐसा भी होता है शाम के 3 से 4 बजे के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसा भी होता है कार्यक्रम को एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, और आशा करते हैं कि ये गीत आपको ज़रूर पसंद आएगा।

लैला मजनू, शीरी फरहा, हीर रांझा,

की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

निधिवन एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत चमत्कार होता रहा है और अभी हाल ही में हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई फिर सैटरडे कल हमने राधाष्टमी मनाई सो निधिवन में निधिवन रहस्यमय जगह है और रहस्य वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मान्यताओं में से एक है मान्यता के अनुसार भक्तों का विश्वास है कि रात में निधिवन में राधा और कृष्ण रास लीला मनाते हैं कहा जाता है कि शाम की आरती के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है और रात में कोई अंदर न आता है न जाता है एक लोकप्रिय कथा के अनुसार वहां मौजूद पेड़ पौधे रात को गोपियों का रूप धारण करके रास लीला में नृत्य करते हैं स्थानीय मान्यता यह भी है कि रात के समय वहां पर पायलों की गूंज सुनाई देती है और वहां पर सुबह जब लोग मंदिर खोलते हैं तो पान का टुकड़ा मिलता है और जो गिलास में दूध होता है वो गिलास गिरा हुआ होता है फूल बिखरे हुए होते हैं इस कारण श्रद्धालु रात में वहां जाने को लेकर विशेष सावधानी और श्रद्धा रखते हैं पर रहस्यमय बात यह है कि रात को जब मंदिर बंद हो जाता है कोई आता जाता नहीं है तब वहां पर रास लीला होता है

कभी किसी ने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, एक बार एक व्यक्ति ने कोशिश की देखने के लिए और वो जिंदगी भर अंधा हो गया। एक दूसरा व्यक्ति ने देखने की कोशिश की और उसकी मृत्यु हो गई। पर ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर निधिवन में, जो भारत में एक जगह है, बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर के बीचों बीच बड़े बड़े पेड़ है, सो वहाँ जो रात के समय जो होता है तो वहाँ पर रासलीला होता है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि मंदिर को बंद करने से पहले पंडितगण क्या करते हैं, मूर्तियों को सजाते हैं, कृष्ण भगवान, राधा, रुक्मिणी की मूर्तियाँ हैं वहाँ पर, खूब अच्छी तरह से उनका अभिषेक होता है, उन्हें सजाया जाता है और प्रसाद और गिलास में दूध डाला जाता है और पान के पत्ते सब जाते हैं। पर सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो वो दृश्य देखने लायक होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ने नृत्य किया है और पान बिखरे होते हैं, ऐसा लगता है जिसने पान का पत्ता खाकर छोटा सा टुकड़ा रख दिया हो और दूध का गिलास गिरा होता है, फूल चारों ओर फैले होते हैं और ऐसा लगता है कि रात भर यहाँ नृत्य हुई है। और जो लोग वहाँ निधिवन के पास रहते वो कहते हैं कि रात के समय उन्हें सुनाई देता है कि पायलों की गूंज, नृत्य हो रहा है, गीत गुणगान हो रहा है, पर किसी की शक्ति इतनी नहीं है कि उस जगह में जाकर देख सके कि आखिर क्या हो रहा है। सो अगर आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो टाइप कीजिए द मिस्ट्री ऑफ निधिवन, NIDHIVAN, और बेशक सो आप वहाँ पर उस वीडियो में देख सकते हैं कैसे वहाँ पर लोगों की मान्यता है कि रात को वहाँ पर आज भी रासलीला होता है।

आत्मा में है, हम सभी के हृदय में है, घट घट निवासी है भगवान, और भगवान निधि फन में भी है। सो एक दिन अगर भारत जाएंगे मौका मिलेगा, सो दिन के दौरान याद रखिए, दिन के दौरान आप निधि वन का भ्रमण कर सकते हैं, पर रात के दौरान वहाँ मत जाएगा। रात के दौरान वहाँ अंदर जाना मना है, क्योंकि मंदिर बंद होता है और द्वार पर ताला लगा होता है। और दुनिया, अब हम बात करेंगे चांद के बारे में। चांद कितना खूबसूरत दिखता है रात को। चांद को देखकर बड़े बड़े कवियों ने प्यारी प्यारी कविताएं लिखी है, गीतकारों ने गीत लिखे हैं, पर क्या आपको पता है कि चांद जो है उस पर इंसान जा चुका है, उस पर प्रवेश कर चुका है और रिसर्च भी हो रहा है। सो चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह घटना 20 जुलाई 1969 को हुई और मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष उपलब्धियों में गिनी जाती है। अपोलो 11 मिशन, अपोलो 11 मून लैंडिंग अमेरिका की नासा का मिशन था। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज़ द मिशन कमांडर, बज़ ऑल्ड्रिन लूनर पायलट और माइकल कॉलिंस कमांड पायलट। चांद पर उतरना बहुत बड़ी बात थी, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान चांद पर जा सकता है। सो 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 पृथ्वी से रवाना हुआ। लगभग 4 दिन बाद 20 जुलाई को आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल ईगल में बैठकर चंद्रमा की सतह की ओर उतरे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने लूनर मॉड्यूल को ट्रंक्युलिटी क्षेत्र में उतारा। इसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ी से नीचे उतरे और चंद्रमा की सतह पर पहला मानव कदम रखा। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, That's one small step for man, one giant leap for mankind. अर्थात यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए बहुत बड़ी छलांग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने लगभग 2 घंटे 30 मिनट तक चंद्रमा की सतह पर बिताए। उन्होंने वैज्ञानिक उपकरण लगाए, चंद्रमा की सतह और मिट्टी के नमूने एकत्र किए, तस्वीरें ली, विभिन्न प्रयोग किए और अमरीकी ध्वज स्थापित किया। उस दौरान माइकल कॉलिंस ऊपर कमान मौजूद कोलंबिया में चंद्रमा की कक्षा में घूम रहे थे। चंद्रमा से उड़ान भरने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन कॉलिंस से दोबारा मिले, तीनों पृथ्वी की ओर लौटे और 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर में उतरे। पूरे मिशन में लगभग 8 दिन 3 घंटे लगे। हाँ, अपोलो 11 के चंद्रमा पर उतरने के पर्याप्त स्वतंत्र और भौतिक प्रमाण मौजूद है, जिनमें वापस लाई गई चंद्र चट्टाने, मिशन के विस्तृत रिकॉर्ड और चंद्रमा पर लगाए गए उपकरणों से प्राप्त डेटा शामिल है। बाद में अंतरिक्ष मिशनों में अपोलो 11 के लैंडिंग स्थल की तस्वीरें भी ली गई है। सो चमत्कार की बात है कि जिस चांद को हम देखते हैं, उस चांद पर इंसान कदम रख चुका है। और बेशक अगर आपको भी मौका मिले और एक दिन आपका कोई कॉन्टैक्ट हो नासा के साथ, तो शायद एक दिन एक मॉरिशस वासी भी वहाँ जाए, जाकर मॉरिशस का झंडा लगाकर आए, तो क्या बात है। और जिस समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर पहुँचे, उसका लाइव प्रसारण चला था उन देशों में जहाँ पर इंटरनेट उपलब्ध थी और लोग लाइव इन डायरेक्ट से देख रहे थे। ज़रा सोचिए वो कैसा मंजर होगा जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम बढ़ाया होगा चांद पर। अब ज़रा सोचिए कि अगर आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह होते और आप चांद पर उतरते तो आपको कैसा लगता। ओए होए, सोचने वाली बात है। दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, जो कभी हम सोच समझ नहीं पाते वो बात हो जाती है।

आज की दुनिया में भी राजा रानी है, प्रिंस प्रिंसेस है, यस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में आज भी राजा रानी है और क्वीन तो नहीं है पर किंग है, प्रिंस प्रिंसेस है। सो आज हम बात करेंगे ऐसा भी होता है कार्यक्रम में प्रिंसेस डायना के बारे में। सो हु वाज प्रिंसेस डायना? जी हाँ, प्रिंसेस डायना जो है शी वाज द प्रिंसेस ऑफ वेल्स। उनका जन्म हुआ 1 जुलाई 1961 को और 1981 में उनकी शादी हुई प्रिंस चार्ल्स के साथ और उनके दो बेटे हुए विलियम और हैरी। डायना अपने सार्वजनिक जीवन में एचआईवी एड्स, बेघर लोगों और बारूदी सुरंगों जैसे मानवीय मुद्दों पर काम करती थी और दुनिया में उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की। शी वॉज ए ग्रेट सोशल वर्कर। और 31 अगस्त 1997 की रात को क्या हुआ? प्रिंसेस डायना उस समय पेरिस में थी। रात में वह रिट्स पेरिस होटल से निकली, उनके साथ ही डॉडी अल्फायद, ड्राइवर हेनरी पॉल और बॉडीगार्ड ट्रेवर रीज जॉन थे। कार मर्सिडीज बेंज S280 थी। लगभग रात के 12:20 पर पोंट दे लालमा सुरंग में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हेनरी पॉल की मौके पर मृत्यु हो गई, डॉडी अल्फायद की भी मृत्यु हो गई और प्रिंसेस डायना गंभीर रूप से घायल हुई। बॉडीगार्ड ट्रेवर रिस जॉन जीवित बच गए। डायना को अस्पताल ले जाया गया लेकिन लगभग 4 सुबह उनकी मौत हो गई। डायना केवल 36 साल की थी। शी वॉज सो यंग, सो डायनामिक एंड फुल ऑफ लाइफ। दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है? जांच में ड्राइवर हेनरी पॉल की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जांच में उसकी शराब की स्थिति और कार की तेजी गति पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही दुर्घटना के समय कार का पपराजी फोटोग्राफर द्वारा पीछा किए जाना भी जांच का प्रमुख विषय था। बाद में ब्रिटेन में हुई 2008 की इंक्वेस्ट में जूरी ने निष्कर्ष किया कि डायना और डॉडी की मौत में हेनरी पॉल तथा पीछा कर रही पापाराजी के गंभीर लापरवाह ड्राइविंग व्यवहार की भूमिका थी। क्या प्रिंसेस डायना की हत्या की गई थी? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जान से मारा गया था। दैट वॉज ए फाउल प्ले, ये लोगों का कहना है। यह सबसे चर्चित सवालों में से एक है। डायना की मौत के बाद यह दावा किया गया कि उनकी हत्या ब्रिटिश शाही परिवार या किसी सुरक्षा एजेंसी की साजिश के तहत की गई थी। इन दावों में यह भी कहा गया था कि डायना की भविष्य में शादी का या गर्भावस्था में जुड़ी संभावनाओं की किसी के लिए समस्या थी, लेकिन इन दावों की जांच भी हुई। ब्रिटिश सरकार द्वारा उपलब्ध कार्रवाई की गई आधिकारिक सामग्री और जांच रिकॉर्ड में ऐसे आरोपों को स्थापित करने वाला प्रमाण सामने नहीं आया। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि साजिश का दावा किया गया और साजिश साबित हुई, दो अलग बात है। और उनकी मौत के बाद डायना की मृत्यु की खबर फैलते ही ब्रिटेन और दुनिया भर में अभूतपूर्व शोक देखने को मिला। कैसिंगटन पैलेस के बाहर लाखों फूल रखे गए और उनके अंतिम संस्कार में विशाल संख्या में लोग शामिल हुए। उनका अंतिम संस्कार 6 सितंबर 1997 को वेस्टमिंस्टर आबे में किया गया। उनकी मृत्यु आज भी लोगों की रुचि का विषय है, खासकर क्योंकि वह कम उम्र में अत्यंत प्रसिद्ध शाही व्यक्तित्व थी और दुर्घटना की परिस्थितियों असामान्य थी। सो लेडी डायना के बारे में हम जितना भी कहें कम है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी महिला थी, बहुत ही दयालु। शी वाज सो जेनरस। वो जहाँ भी जाती थी बहुत डोनेशन करती थी, गरीब लोगों की मदद करती थी, अपाहज लोगों की मदद करती थी। बहुत सारे अस्पताल में उन्होंने डोनेशन दिए, चैरिटीज इंस्टीट्यूशन में पैसे दिए। जितने भी लोग एड्स से पीड़ित थे उनकी बहुत मदद की। पर उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन था। कहा जाता है कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी एंड दैट शी वाज़न्ट हैविंग एन अफेयर विद हर ड्राइवर डॉडी अल्फायद। अब ये बात कहाँ तक सच है? अगर डायना जिंदा होती तो बता पाती, बट दैट्स हर पर्सनल लाइफ। सभी का आजकल पर्सनल लाइफ होता है ना। इस पर उंगली उठाने से पहले हमें अपनी गरिबान के अंदर झांकना चाहिए, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। ओके, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और था, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसे जान से मार दिया जाए। डायना केवल 36 साल की।

1970, she was only 36 years old, जब मौत ने उसे गले लगा दी. अगर आज वो जिंदा होती तो कितनी खुशी की बात होती. And she would have done so many things for the poor people. अफसोस आज वो हमारे साथ नहीं है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. Princess Diana would always be remembered in the hearts of many people.

शाम के पौने चार बज रहे हैं, आप सुन रहे हैं एमबीसी और एम फ्री रेडियो मनोरंजन से प्रोग्राम ऐसा भी होता है और जय प्रताप सिंह के साथ शाम के चार बजे तक और चार बजे से पांच बजे हम प्रस्तुत करेंगे फिल्मी गजलें प्रोग्राम। सो आज का शो दो घंटे का होगा और शाम के चार बजे सम लवली गजल्स शाम के पांच बजे तक। सो आपको हमारा साथ देना है आज शाम के पांच बजे तक ऑन एम फ्री रेडियो मनोरंजन। अब हम बात करेंगे भारत की भूतिया जगहों के बारे में। भारत में बहुत सी ऐसी जगह है जो बहुत डरावनी है, हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया, और जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। ठीक है, सो उन जगहों के नाम इस तरह से है: भानगढ़ किला राजस्थान, कुलधरा गांव राजस्थान, शनिवार वारा पुणे, और ड्रुमस बीच गुजरात। और भानगढ़ किला राजस्थान सूर्यास्त के बाद प्रवेश को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। कुलधरा गांव राजस्थान, वहां पर अचानक खाली हुए गांव से जुड़ी कई लोक कथाएं हैं। और शनिवार वारा पुणे, एक ऐतिहासिक महल जिसके बारे में एक युवा राजकुमार की हत्या और उसकी आत्मा की कहानी प्रसिद्ध है। और ड्रुमक बीच गुजरात, जहां भी स्थानीय स्तर पर भूतों की कहानियां हैं। और भानगढ़ किला भारत का सबसे भूतिया किला। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित एक प्राचीन किला है। यह 16वीं शताब्दी में आमेर के शासक भगवंत दास से जुड़ा माना जाता है। आज यहाँ खंडरों के रूप में मौजूद है और इसके साथ कई डरावनी कहानियाँ हुई है। और सबसे प्रसिद्ध कहानी ये है कि तांत्रिक सिंधिया। लोक कथा के अनुसार भानगढ़ में राजकुमारी रत्नावती रहती थी। कहा जाता है कि वह बहुत सुंदर थी और दूर दूर से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आते थे। कहानी में सिंधिया नामक एक तांत्रिक का उल्लेख आता है। वह राजकुमारी से प्रेम करने लगा लेकिन राजकुमारी से उनका प्रेम स्वीकार नहीं किया। राजकुमारी उसका प्रेम स्वीकार नहीं किया। एक दिन लोक कथा के अनुसार सिंधिया ने राजकुमारी की दासी को दिए गए जाने वाले इत्र पर जादू तंत्र यंत्र करने की कोशिश की। राजकुमारी को इसका पता चल गया और उन्होंने यह इत्र फेंक दिया। कहानी के अनुसार इत्र चट्टान पर गिरा और वह चट्टान तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगी। मरने से पहले उसने कथित रूप से भानगढ़ को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि उसके श्राप से के कारण पूरा नगर उजड़ गया। सो बहुत सारी कहानियां हैं इन सब जगहों के बारे में। और वैसे तो इन सब जगहों में रात के समय जाना मना है, और जो है अगर लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं तो या तो लोग गायब हो जाते हैं या लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सो ज़रूर याद रखिएगा इन जगहों के नाम। जो भारत में भूतिया जगह है वो है भानगढ़ किला, कुलधरा गांव, शनिवार वारा और ड्रुमस बीच। सो ये जो जगह है भूतिया है, ये जगह हॉन्टेड प्लेसेस है, बहुत डरावनी है। और रात के समय यहाँ पर अजीबोगरीब औरतों के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। कभी किसी लड़की की आवाज़, कभी किसी महिला की आवाज़, कभी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर दूर से देखने में कुछ दिखता तो नहीं है, पर लोग वहाँ जाने से डरते हैं।

कहा जाता है दोस्तों जो बड़े बड़े लेखक होते हैं अंग्रेजी और फ्रेंच लेखक बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी है उपन्यास पर उनका जीवन जो है बहुत कठिनाइयों से भरी है और उनकी मौत भी अजीब तरीके से होती है। बहुत से जो कहानीकार है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी या उनकी जो मौत हुई बहुत दर्दनाक थी। उन्हीं में से एक है विलियम शेक्सपियर। अंग्रेजी लेखक थे। उनकी मृत्यु हुई 23 अगस्त 1616 में इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड अपन एवन जगह में। उस समय वो 52 साल के थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शेक्सपियर की मृत्यु का निश्चित चिकित्सकीय कारण आज तक ज्ञात नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ। 1616 के समय आधुनिक चिकित्सा और बीमारी की

0: जांच के साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनकी मृत्यु प्रमाण के आधार पर किसी एक बीमारी को निश्चित रूप में बताना संभव नहीं है। उनकी मृत्यु से जुड़े कुछ पुराने विवरण और बात की अटकलें मिलती है। एक प्रसिद्ध कथा में कहा जाता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने मित्रों के साथ शराब पी थी और उसके बाद बीमार पड़ गए, लेकिन यह कहानी का ऐतिहासिक आधार कमजोर माना जाता है। शेक्सपियर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने जन्म स्थान स्ट्रैटफोर्ड अपन एवन में रह रहे थे। उनकी पत्नी आन हाथवे और परिवार भी वहां से जुड़े थे। उन्होंने अपनी वसीयत 25 मार्च 1616 को तैयार की थी, मृत्यु से लगभग एक महीने पहले। इससे पता चलता है कि उस समय वे अपने मामलों को व्यवस्थित कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपन एवन में दफनाया गया और उनकी कब्र का रहस्य, उनकी कब्र पर एक प्रसिद्ध शिलालेख है जिनमें उनकी हड्डियों को दूसरी जगह न ले जाने की चेतावनी दी गई है। बाप रे बाप, इसी जगह से उनकी कब्र को लेकर बहुत सी कहानियां बनी। हालांकि उनकी मृत्यु के वास्तविक कारण का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, इसलिए शेक्सपियर को किस बीमारी ने मारा इस ईमानदार उत्तर सही नहीं है, इससे निश्चित रूप से नहीं जानते। और शेक्सपियर जो थे बहुत बड़े लेखक थे, पर उनकी मृत्यु बहुत रहस्यमय तरीके से हुई है।
1: मौत से क्या डरना।
0: और इसी के साथ ही अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है यहीं पर समाप्त होता है। 4 बजे होगा फ्लैश न्यूज, उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, कहीं जाइएगा मत। अगला प्रोग्राम हम प्रस्तुत करेंगे फिल्मी गजलें। स्टे ट्यून्ड।

0: पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद शरीर और मन के बीच संतुलन पर जोर देती है। इसी विषय पर गुरुवार 17 सितंबर को मॉरिशस विश्वविद्यालय में चर्चा और विचार विमर्श हुआ। ये कार्यक्रम आयुर्वेद दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसे 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयुर्वेद कोने का शुभारंभ किया गया। खाली जमीनों को अक्सर कचरा फेंकने की एक जगह बना दी जाती है। सफाई अभियान चलाए जाने और इन स्थानों तक पहुंच रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बावजूद कुछ लोग फिर भी यहां अपना कचरा फेंकने आ जाते हैं। इस स्थिति से आसपास के रहने वाले लोग बेहद परेशान होते हैं, साथ ही इससे जमीन के मालिकों की जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। माहोवाकुआ जलाशय का जलस्तर गंभीर स्तर से नीचे चला गया है। इसी जलाशय के किनारे आर्य सभा मॉरिशस ने 12 घंटे के लिए एक वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मंत्र उच्चारण और आहुतियों के साथ पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए प्रार्थना की गई। और आज सुबह सुब्रमण्य भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया और उनकी कविताओं का पाठ किया गया। ये कार्यक्रम प्लेनवेत में लगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू महाजन संगम की पहल पर किया गया। ये संस्था तमिल संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करती है और सैकवा स्थित कैलासों कोविल का प्रबंधन भी करती है। विदेश में मॉस्को में बड़े पैमाने के एक यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की जानें गई हैं। मॉस्को के मेयर का कहना है कि राजधानी की ओर बढ़ रहे 450 ड्रोन को मार गिराया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। हम मिलेंगे शाम 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन के साथ।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

शाम के 4:04 हो रहे हैं। ये है एमबीसी ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर अपने होस्ट दोस्त सौजी प्रताप सिंह का प्यार भरा सलाम। मेहरबानों कदरदानों आप सभी का हम शानदार स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है गजलों का प्रोग्राम फिल्मी गजल, अभी से लेकर शाम के 5 तक। संडे की मस्तानी और रोमांटिक शाम है, बस आ जाइए। प्यारी प्यारी गजलों से हम आपका मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, तन्हा आप है तन्हा हम भी, तन्हा आप है तन्हा हम भी, तो चलिए इस तन्हाई को दूर करते हैं चंद मीठे मीठे प्यारे प्यारे गजलों के साथ। और इन गजलों में बहुत सारा प्यार है, बहुत सी मोहब्बत है। जगजीत सिंह की जुबानी, जगजीत सिंह कहते हैं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, अब जिंदगी क्या है, चलिए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।

तेरे बगैर एक पल भी जिया नहीं जाता, तेरे बगैर एक पल भी जिया नहीं जाता। काश तुम आ जाती तो कितना अच्छा होता, काश तुम आ जाती तो कितना अच्छा होता। हम तुम्हें बता पाते किस दिल में तेरे लिए कितनी मोहब्बत है। तेरे बगैर एक पल भी जिया नहीं जाता, काश तुम आ जाती।

क्यों इतना तरपाती हो तुम क्यों इतना तरसाती हो तुम क्यों दौड़ी चली नहीं आती हो तुम कहती हो तुम्हें हमसे मोहब्बत है तुम कहती हो तुम्हें हमसे मोहब्बत है अगर ये बात सच है तो चली आओ अब तो चली आओ

ये शाम तन्हा है, अकेली है ये शाम, क्योंकि तुम्हारा साथ नहीं है। जब तुम साथ होती हो तो शाम बहुत अच्छी लगती है, पर ये शाम अधूरी है, फीकी सी ये शाम। अगर तुम आ जाती तो कितना अच्छा होता, अगर तुम आ जाती तो ये शाम रंगीन हो जाती। हम और तुम एक साथ मिलते, एक दूसरे के साथ कुछ मीठी मीठी बातें करते, और एक दूसरे के साथ दिल की भावनाओं को एक दूसरे को सुनाते। काश आज की शाम तुम भी आ जाओ मेरे साथ, हाथों में हाथ डाल के, आंखों में आंखें डाल के अगर हम बात कर सकते तो ये शाम एकदम रंगीन हो जाती।

0: को क्या।
1: अनूप जलोटा के गए इस गजल के बाद एक अंतिम गजल आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे जगजीत सिंह की जुबानी बादल की तरह। शाम के 3 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया, करम मेहरबानी। हमारी आपकी मुलाकात होगी मंगलवार की रात्रि को रात के 9 बजे से रात के 11 बजे तक रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर मस्ती भरे प्रोग्राम के साथ भोजपुरी तड़का। तो मंगलवार तक हमें दीजिए इजाजत और जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आदाब। हमारे बाद शीतल से आप सुनेंगे प्रोग्राम यादें शाम के 5 से 6 बजे के बीच। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। मिलते हैं मंगलवार की रात को 9 से 11 बजे MBC रेडियो पर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्कार।

साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़ी रहती है वो है यादें। ये उन दिनों की बात है जब हमारे जिंदगी के गीत और संगीत से कुछ हद तक जुड़े होते थे। ये उन दिनों की बात है जब प्यार मोहब्बत के एहसास को हम उन गीतों के जरिए सुनते थे और सुनाते थे। जब पुराने गीतों की बात चलते हैं, विशेषकर 50 से लेकर 80 के दशक तक भारतीय संगीत और सिनेमा की एक महत्वपूर्ण पहचान माने जाते हैं। मधुर और यादगार धुनों को एक बार फिर हम यादें प्रोग्राम में ले आए हैं। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, हसरत जयपुरी ने इस गाने को बड़ी खासियत से लिखा। शंकर जयकिशन ने अल्फाज को अपनी धुन से सजाया। फिल्म आई थी 1959 में अनारी। द ग्रेट फिल्म मेकर राज कपूर के ओपोजिट बेहद ही हसीन नूतन मौजूद रही। डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। लता जी और मुकेश ने इन कलाकारों के लिए प्लेबैक दिया।

0: चलते हैं 50 के दौर में बाबूजी धीरे चलना आर पार फिल्म रही जो कि आई थी 1954 में एक बेहद ही खूबसूरत कहानी के साथ साथ जुड़ गई शकीला श्यामा और गुरुदत्त एक्टिंग के अलावा गुरुदत्त इस फिल्म के डायरेक्टर रहे संगीत दिया इस फिल्म में एक न भूलने वाले म्यूजिक कंपोजर ओ पी नैयर साहब
1: बाबू

पुराने गीतों में खासियत ये रही कि उस दौर से लेकर आज तक कई दशकों के बाद भी उन गीतों को हम याद करते हैं, उन गीतों से हम जुड़ जाते हैं और उन गीतों से आज के नए कलाकार प्रेरित भी होते हैं। छोड़ दो आज चल जमाना क्या कहेगा, देव आनंद जैसे महान कलाकार को हम कैसे भूल सकते हैं, जहां नूतन उनके साथ जुड़ गई फिल्म पेइंग गेस्ट में 1957 की फिल्म रही। किशोर कुमार और आशा जी ने आवाज दी इन दो महान कलाकारों के लिए।

पुराने गीतों के बाद चलें लता जी, मुकेश साहब, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे महान कलाकारों को हम विशेषकर याद करते हैं। इनकी आवाज ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्यार करना सिखाया, लोगों की जिंदगी से जुड़ गए और हिंदी सिनेमा को, संगीत को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिए।

A beautiful duet लता जी और आशा भोसले 1956 की फिल्म चोरी चोरी गाने को लिखा शैलेंद्र साहब ने और उस दौर के महान संगीतकार की जोड़ी शंकर जयकिशन ने क्या खूब सजाया इस गाने को मनभावन के घर आई कोरी।

जिंदगी की कहानी अपने आप में अजीब गरीब होती है, अजीब दास्तां हैं ये, कहां शुरू कहां खत्म। 1959 की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराये से लिया गया ये गाना। शैलेंद्र के लिखे हुए अल्फाज को लता जी ने बड़ी खूबसूरती से सुना दिया, शंकर जय किशन ने संगीत दिया और ये गाना पिक्चराइज हुआ उस दौर के दो महान कलाकारों पर, राजकुमार और मीना कुमारी। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम।

एक ऐसे कलाकार को हम याद करते हैं जो अपने दौर के एक संपूर्ण फिल्म मेकर रहे, उत्तम कुमार। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई और प्यार बन के गले का हार बन गई। छोटी सी मुलाकात फिल्म आई थी 1967 में। उत्तम कुमार के साथ साथ विजयंतीमाला इस गाने में पिक्चराइज हुई। मोहम्मद रफी और आशा जी ने इस गाने को पेश किया। हसरत जयपुरी के लिखे हुए इन अल्फाज पर संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

जिंदगी में प्यार करना सीख ली। प्रेमाक्तिया आशा भोसले ने शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा था और ये गाना पिक्चराइज हुआ शशिकला पर। म्यूजिक कंपोजिशन इस गाने में दिया रवि साहब ने। ये फिल्म आई थी 1966 में, फूल और पत्थर।

द चार्म एंड द ब्यूटी ऑफ द गोल्डन एरा। ये टाइटल गाना रहा फिल्म हरियाली और रास्ता का, एवरग्रीन रोमांटिक क्लासिक ये हरियाली और रास्ता, एक न भूलने वाला गाना। प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय विजय भट्ट। 1962 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म में लीड एक्टर रहे मनोज कुमार और माला सिन्हा। फिल्म के साथ साथ इस फिल्म के गीतों ने अपना एक अलग छाप छोड़ दिया हिंदी सिनेमा पर।

एक दिल से जुड़े अनगिनत अफसाने, द ब्यूटी ऑफ द गोल्डन एरा। उन दिनों के गीतों की बात ही कुछ और थी। एक बार सुनने से दिल नहीं भरता, सुनने की चाह बार बार होती है। एक अमर आवाज, वो रही लता जी की आवाज। वो आवाज गूंजी विजयंती माला के लिए, ये दिल और उनकी निगाहों।

एवरग्रीन बॉलीवुड क्लासिक आपकी कसम 1974 में ये फिल्म आई थी द मैजिकल ड्यूएट किशोर कुमार एंड लता जी इन दोनों ने प्लेबैक दिया राजेश खन्ना और ग्रेसफुल मुमताज के लिए जहां संगीतकार रहे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक कंपोजर ऑफ इंडियन सिनेमा राहुल देव बर्मन और गाने को लिखा आनंद बख्शी ने

मेट्रो वाला रोमैन अभी न जाओ छोड़कर कि तिल लभी भरा नहीं। जयदेव साहब ने साहिर लुधियानवी के लिखे हुए गाने को म्यूजिक कंपोजिशन दिया, एक ऐसा गाना जो कि भूले से भी भुलाए नहीं जाएंगे। फिल्म हम दोनों से लिया गया इस गाने को प्लेबैक दिया आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के 6 बजे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। खाली जमीनों को अक्सर कचरा फेंकने की एक जगह बना दी जाती है। सफाई अभियान चलाए जाने और इन स्थानों तक पहुंच रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बावजूद कुछ लोग फिर भी यहां अपना कचरा फेंकने आ जाते हैं। इस स्थिति से जमीन के मालिकों की जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सैपुल स्थित जे बालगोबिंद आश्रम ने अपनी स्थापना की 31 साल मनाई। आर्य सभा मॉरिशस के संरक्षण में संचालित इस संस्थान में 75 निवासी रहते हैं, जिनमें बुजुर्ग और मानसिक अक्षमता से जूझ रहे लोग शामिल हैं। पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए माओवाकवा जलाशय में आज वृष्टि महायज्ञ का आयोजन, जहां का जल स्तर गंभीर रूप से प्रभावित। आर्य सभा मॉरिशस की पहल पर आयोजित इस यज्ञ में मॉरिशस वासी की बड़ी संख्या में भागीदारी। विदेश में एल साल्वाडोर के पूर्वी हिस्से में स्थित लागुना दे अलेग्रिया भीषण सूखे की चपेट में है।

वहां पर मौसम के बीच तेजी से जलस्तर खो रही है। इस स्थिति ने स्थानीय निवासियों और जल संसाधन विशेषज्ञों को की चिंता बढ़ा दी है।

0: इस स्थिति से आसपास के रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं, साथ ही इससे जमीन के मालिकों की जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
1: यहाँ कॉलोव्यू में कूड़े की थैलियाँ, पुरानी अलमारियाँ सब फेंके गए हैं। बाशिंदों के लिए ये स्थिति चिंताजनक और पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
2: Construction. En démolition, je viens d'être là. Si je m'en suis dit, je fous une cassée, l'autre machine à laver, je n'ai pas, je n'ai qu'à le dire.
1: थोड़ी दूरी पर होशबुइन में हालात ऐसे ही हैं। अधिकारियों ने एक खाली पड़ी जमीन के मालिक से यहां घेरा लगाने और कचरा साफ करने की मांग की थी, क्योंकि इस जगह को देखकर ही आंखों को तकलीफ होती थी। सफाई भी की गई, घेरा भी लगाया गया, लेकिन ये काफी नहीं रहा। लोगों ने घेरा हटाकर अब वहां फिर से कचरा फेंका है।
3: Les réparer, ça veut dire les respect mentalité, ça veut dire nettoyer, jeter, pas mettre une solution.
1: ऐसी स्थिति जो हमें एहसास दिलाती है कि सफाई से बढ़कर लोगों को अपनी सोच को बदलना चाहिए। इंस्पेक्टर विश्वनाथन अमा से बताते हैं। मालिकों को घेरा लगाना चाहिए, खेती करें, उस जगह को साफ रखें, लेकिन हमें ये भी कहना चाहिए कि कुछ ऐसे गिने चुने लोग भी हैं जिनकी हर जगह कचरा फेंकने की अब आदत सी बन गई है। अधिकारी मांग करते हैं कि पुरानी अलमारियां, अन्य बड़े सामानों के लिए सेवाएं उपलब्ध हैं। नगर पालिका के साथ संपर्क करें, इसके लिए एक रकम चुकानी पड़ेगी, लेकिन आपको पता होगा कि कचरा कहाँ फेंके, यहाँ वहाँ सड़कों पर नहीं। पुराने गड्ढे, डालियाँ, सभी ऐसे कचरे के लिए हमें शहर को साफ रखना चाहिए। मालिक, अधिकारी और बाशिंदे सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि पर्यावरण और नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये सभी स्थल एक बार फिर से खुलेआम कचरा फेंकने की आम जगह बन जाएंगे।
0: रम डे मोरिस के जियोग्राफिकल इंडिकेशन लेबल का आधिकारिक अनावरण किया गया। ये लेबल उत्पाद की उत्पत्ति और निर्धारित मानकों व नियमों के पालन की गारंटी देता है। इस साझा पहचान के तहत मॉरिशस की 7 स्थानीय डिस्टिलरी एकजुट हुई है। इस पहल का उद्देश्य मॉरिशस के रम को विदेशी मंडियों में बेहतर ढंग से स्थापित करना और उसकी पहचान मजबूत करना भी है। कोयल सीतल की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: मॉरिशस को उसकी रम के लिए नई पहचान मिली। नया लेबल रम डे मोरिस जनता के सामने पेश किया गया। इसे प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन का प्रमाण मिला है। इससे मॉरिशस में तय नियमों के अनुसार तैयार की जाने वाली इस रम को एक अलग पहचान मिलेगी।
4: Rhum, il fait à partir du sucre et le sucre, c'est par rapport à nos cannes qui nous plantaient à Maurice.
1: रम शक्कर से बनती है जो यहाँ के गन्ने से मिलती है। आज हमारे रम अन्य देशों के रम से अलग हैं क्योंकि हमारी भूमि ही अलग है। ये मान्यता यूरोपीय संघ की ओर से मिली जो इस विरासत का संरक्षण करता है। इस लेबल का संबंध 7 स्थानीय डिस्टिलरीज से है। हमारे देश के गन्ने से ये रम बनती है। इसमें मॉरिशनों का ज्ञान है, डिस्टिलरी का तरीका है, जो सभी दिखाते हैं कि आज मॉरिशस का रम बेहतरीन किस्म का है। यह मान्यता विदेशों में मॉरिशस की रम की विश्वसनीयता को भी मजबूत करेगा। इससे रम के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
5: Le rhum de Maurice est très prisé, mais aussi nous faisons réaliser qu'il y a beaucoup de compétition sur le marché.
1: Mauritius ke rum ki mang zyada hai lekin competition bhi hai.

0: जैसे जमैका आदि। इसीलिए मॉरिशस की अपनी ठोस पहचान होना जरूरी है। मंत्रालय आने वाले दिनों में एक जियोग्राफिकल इंडिकेटर के साथ सामने आएगा स्थानीय सामानों के लिए, ताकि उन्हें विदेशी मंडी में पहचान मिले।
1: Geographical indicator pour tout bon produit qui relie avec Maurice. Et ça peut donner plus de visibilité à bon produit mauricien sur bon marché international.
0: इस तरह रम दे मॉरिस मॉरिशस के दो अन्य भौगोलिक संकेतों मॉरिशस शुगर्स और लिमो रोड्रिग में शामिल हो गया है।
2: माहोवाकवा जलाशय का जल स्तर गंभीर स्तर से नीचे चला गया है। इसी जलाशय के किनारे आर्य सभा मॉरिशस ने एक वृष्टि महायज्ञ आयोजित किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मंत्र उच्चारण और आहुतियों के साथ पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए प्रार्थना की गई। आस्था गोबिंद चितामन की ये रिपोर्ट पेश है।
3: माओवाकवा का जल स्तर घट रहा है। इसी जलाशय के समीप आर्य सभा मॉरिशस ने वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया। ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्त में वर्षा को धरती और वनस्पतियों के जीवन से जोड़ा गया है। यहाँ वैदिक मंत्रों के बीच अग्नि में आहुतियाँ अर्पित की गईं। यज्ञ में सामग्री भी डाली गई, जड़ी बूटियों, घी, सूखे मेवों और अन्य पदार्थों का मिश्रण। यज्ञ और वर्षा के बीच माने जाने वाले संबंध की वैदिक तथा वैज्ञानिक व्याख्या भी की गई।
4: और इस यज्ञ में हम विशेष मंत्रों का पाठ करते हैं जिससे एक वर्षा हो सकती है, और खासतौर जब पर सूखा पड़ता है तो इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है जलाशय या नदी के पास। और इससे क्या होता है कि जो विशेष हम औषधि इसमें इस्तेमाल करते हैं वो औषधि मतलब वर्षा को मतलब ज़्यादा आकर्षित करते हैं और इससे वर्षा होती है। इसमें विशेष जो है घी इस पर डालते हैं, और इसमें जो सामग्री होते हैं उसमें विशेष औषधि, शहद और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लगाया जाता है। जो मॉलिक्यूल ये औषधियों में मतलब रहें उसको हम धीरे धीरे पूरे ये जो वातावरण है हमारा हवा है मतलब पर्यावरण में उसको धीरे धीरे जाता है तो एक तरह से क्लाउड सीडिंग होता है, और उस क्लाउड सीडिंग से हमारा जो जगह है वो ठंडा पड़ जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो ठंडे होने के कारण वो वर्षा होने लगती है।
3: दिन भर श्रद्धालु सामूहिक प्रार्थना में भाग लेने आती रही। मंत्रों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण पर भी चर्चा हुई। वर्षा के लिए प्रार्थना के साथ प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दिया गया।
5: तो ये वेद के आधार पर मंत्र पाठ करते हैं, और वो मंत्र में भी जैसे मेंढक शोर करते हैं ना, इसी प्रकार से कुछ मंत्र इस प्रकार से है जो शोर करे और बादलों को इकट्ठा करे ताकि बरसात होवे। के वेदों में कहा गया है यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, और सर्वश्रेष्ठ कर्म कैसे, अभी देखिए हम तो यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से, और देखिए कि हमारे जो पहाड़ों में जो नाले हैं, जो जहाँ पर पेड़ जम गए हैं, जो नाले जलाशय में पानी लाते हैं उसको साफ करना भी एक यज्ञ है, उसको भी साफ करना एक यज्ञ है। और जितने भी नाले होते हैं जो पानी लाकर हमारे जलाशय में छोड़ते हैं, लोगों से तो यही हम मांग करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि इन नाले में ना फेंके, ये भी एक यज्ञ है।
3: सायं 6 बजे अंतिम आहुति के साथ महायज्ञ पूर्ण हुआ। माओवाकवा के समीप की गई ये प्रार्थना समूचे देश के लिए थी, अच्छी वर्षा हो और जलाशयों के साथ अन्य जल भंडार भी फिर से भर उठे।
2: सैंपल स्थित जिबा गोपीनाशम ने अपनी स्थापना की 31 साल मनाए। आर्य सभा मॉरिशस के संरक्षण में संचालित इस संस्थान में 75 निवासी रहते हैं, जिनमें बुजुर्ग और मानसिक अक्षमता से जूझ रहे लोग भी शामिल हैं। आश्रम की 31वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति भी उपस्थित रहे। क्रिस्टल विभास की रिपोर्ट पर सुनते हैं रजनी बिकर को।
6: एक स्केच के माध्यम से आश्रम में रहने वाले 3 लोगों ने आश्रम में अपने दैनिक जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए।
7: Et nous tous nous comprenons.

0: जदुनानन भार्गवीन आश्रम में आज 75 लोग रह रहे हैं। वृद्ध लोग हैं, लेकिन साथ में मानसिक परेशानियों से ग्रस्त लोग भी, जिन्हें जीवन शैली के अनुरूप चलना है और उचित सहायता से भी वे लाभ उठा रहे हैं। जदुनानन भार्गवीन आश्रम के ऑफिसर इंचार्ज हीरामणि दीनदयाल ने कहा,
1: इकतीस साल
0: हो गए हैं जब से इस आश्रम में लोगों की देखभाल की जा रही है। गर्म जोशी भरे और दोस्ताना माहौल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
2: trouve une solution à ce que nous appelons generation gap entre les vieux et les jeunes. Et on a un moyen pour rapprocher les deux, les jeunes et les vieux. On peut aussi dire qu'avec la technologie qui peut avancer, nous devons faire attention pour ne pas gagner un digital divide entre les personnes âgées et les jeunes.
0: वहाँ रहने वाले कई लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गीत, कविता और कलात्मक रचनाएं इस सालगिरह के लिए मिलजुल कर रहने और मेल जोल की भावना पर ध्यान केंद्रित खासकर एक ऐसा मौका रहा जब ये लोग अपनी कला के माध्यम से अपनी आप बीती बयां कर रहे थे। 31 वर्षों भार्गवीन आश्रम के इतिहास को दर्शाया जा रहा था।
3: मॉरिशस में रामायण गान हिंदू संस्कृति का एक अलग अंग है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आवाज संगीत और रामचरितमानस की चौपाइयों के पाठ के माध्यम से आगे बढ़ती जा रही है। इसके लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन की ओर से रामायण गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका फाइनल पोर्टलिस में लगा। चौताल और मॉडर्न क्लासिकल कैटेगरी में जीत नोत्रदाम काली माता मंदिर की टोली की हुई और पारंपरिक गायन में रामायण सेवा संगठन मेजिन कौदे मास की टोली की जीत हुई। अर्चना मिश्रा।
4: रामायण का पाठ करना, रामायण गायन एक वास्तविक कला है। रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों को पारंपरिक धुनों के अनुसार गाया जाता है। इसमें लय और स्वर के साथ रामायण के कई प्रसंगों को जीवंत किया जाता है।
5: जो उनको मजा हिंदी में जाए उतना बोले लन जा तो उन लोग में थोड़ा कठिनाई हुए ला। जब हिंदी बोले जान जेबा तो हमने के हो शब्द उच्चारण करके ज़्यादा अच्छा रहेला और राग डाले के भी अच्छा रहेला। और जो से चौपाई के राग दूसर है, दुहा के राग दूसर है, और कमिश्रता के राग दूसर है।
6: रामचरितमानस सब सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है, इसलिए इसको नित्य प्रतिरोज इसका पाठ करना चाहिए और स्वरबद्ध करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, भाव श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए।
4: मंच पर अलग अलग समूह रामायण गायन की अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। कुछ समूह पारंपरिक शैली में, कुछ आधुनिकता के साथ अपनी प्रस्तुति पेश करते हैं। इसके लिए तैयारी, रामचरितमानस के पाठ की अच्छी जानकारी और इस परंपरा की विशिष्ट धुनों और लय को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
7: हम छोटा से खेलते ढोलक चौताल, ढोलक सीखे के आगे हम कबीला के जो नामक रह आगे मिल के जीबिया और लेगा वेजी करके उसे बजावट रही सा। तब आले आले बैठका में जब चौताल 40 दिन हुए तो हमने छोटा रही सा था, देखा रही सा तो जब वो लोग पोजे हो गए पो तब हम लेके ढोलों का सही कर रहे टली। तो एक वो दादा बोले एक दिन ही निमन से बजाए और कैसे बोले और बोली और कैसी सच हो अभीले बजाई थे हैं। अब जनबा अब मुझे जो जन लोग दूसर कायदे खेले तो उनसे अनुभव है सो लें स्ट्रीमों सब कायदे ने स्ट्रीमों से भी करने सो लाग अब तो लागी तो सब दादा तो उनसे
8: कमी बिजे फेयर मैन जन कॉन्टेंट रामायण आवो गॉड ला ट्रेडिशन सब जे ला फासों जे वे अशों की चुपे चुपे संते ट्रेडिशनल ला वे सो लोटार सो डोलोक सो जाल मे मेंटेनेंस से मां प्लस वी के कमी सेरे ला वी पे एवोलुए एक बन जन ला जे प्याल दन लोट डायरेक्शन अलोस मां कम गुरुजी की मुझे फेयर सौ सौ जन चुपे बन राग की प्याले ला दो।
4: युवाओं की भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

0: je peux faire lire avec la joie. Quand je peux finir toutes les affaires, je peux assiser, je peux faire lire comment un passe-temps pour eux. Je peux faire lire pour garder une culture.
1: Dans l'enfance, moi, je parle de la 6 freestyle vagogne dans notre mandir. Là, depuis là-bas, nous commençons à prendre tabla. Donc moi j'ai de l'eau que mon accompagne maintenant.
2: Maman m'a pas tué à petit mais moi je suis là et depuis je suis là même mon apprend la mayenne et la mayenne fait moi apprendre beaucoup d'affaires.
3: Et depuis petit moi de la musique me ressonne me se tablasse et mon courage tout mon bail behind c'est qui fait ça et je de la musique faire la prière tout là.
4: तीन श्रेणियों पारंपरिक आधुनिक और चौताल में आयोजित यह प्रतियोगिता मात्र एक प्रस्तुति ही नहीं हर समूह अपनी अलग शैली के साथ प्रस्तुति देता है लेकिन साथ ही उस परंपरा से भी जुड़ा रहता है जो मॉरिशस के हिंदू समुदाय की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
5: आज सुबह सुब्रमण्य भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया और उनकी कविताओं का पाठ किया गया। ये कार्यक्रम प्लान व्यत में लगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू महाजन संगम की पहल पर किया गया। ये संस्था तमिल संस्कृति के संरक्षण और मतलब के लिए जहां ये संस्था तमिल संस्कृति के लिए काम करती है और सैखवा स्थित कैलासों कोविल का प्रबंधन भी करती है। सुब्रमण्य भारती एक भारतीय पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें आधुनिक तमिल साहित्यिक शैली का जनक माना जाता है। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर सुनते हैं रजनी पिकर को।
6: सुब्रमण्य भारतियार एक तमिल विद्वान स्वदेश मित्रन अखबार के पत्रकार भारत में वे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में भी संलग्न रहे।
7: Quand nous guettons ben du monde qui ne la guerre dans le passé, toutes difficultés qui sont capables de finir non. Pour la guerre, pour l'émancipation, pour la guerre, pour ben droit humain.
6: रविवार 20 सितंबर को प्लान बैक में उनके नाम समर्पित एक बाग में उनकी 105वीं पुण्यतिथि के अवसर पर फूल चढ़ाने संबंधी एक समारोह का आयोजन। मौके पर मौजूद अतिथियों ने उनके कार्यों की सराहना की।
8: Passé dans langue tamoul dans plusieurs les autres langues bien écrire et c'est ça qui nous encourage nos jeunes maîtrise langage passé anglais français créole.
6: उनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय रही हैं कनन पट्टू।

0: लिए।
1: श्री कृष्ण को समर्पित गीत जिसे श्री सुकलिंगम मीनाक्षी अकादमी के बच्चों ने गाया।
2: मनदिल उरदि वेंडुम वाक्की निले इनिमे वेंडुम निनेवु नल्लरु वेंडुम।
1: हिंदू महाजाना संगम के संचालक सैद खां के कैलासो कोविल के मूल ढांचों में सुधार कार्य लाने का इरादा रखते हैं। नौजवानों को सुब्रमण्य भारतियार की कविताओं को अतिरिक्त रूप से सीखने का मौका मिल सके, इसलिए
3: Comme un nouveau bâtiment où a coupé ma classe tamil, donc à la son, pour l'instant, il est bien serré, nous pouvons les élèves augmenter.
1: Tamil Sanskriti Sambandhi Pehluon ko ve jaan sakenge.
4: विदेश में अल सल्वाडोर के पूर्वी हिस्से में स्थित लागुइना दे अलेग्रिया भीषण सूखे की चपेट में है। जी हाँ, वहाँ इस स्थिति ने स्थानीय निवासियों का मतलब और जल संसाधन विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। वहाँ पर हरे पानी के लिए प्रसिद्ध ये ज्वालामुखीकृत झील बारिश के मौसम के बीच भी तेजी से जलस्तर खो रही है। और उधर मॉस्को में रात भर हुए बड़े पैमाने के यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की जाने गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर ने कहा है कि राजधानी की ओर बढ़ रहे 450 ड्रोन को मार गिराया गया। उन्होंने इसे अभूतपूर्व हमला बताया है। और इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि शनिवार को कीव और सुमी क्षेत्रों में रूसी हमलों में 8 लोग मारे गए थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। और अब आखिर में मौसम का हाल।

मस्कारीन के दक्षिण में एक काफ़ी ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। कल भी, मतलब कल बादल कुछ घिरे रहेंगे और देश के दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम तापमान 21 से 24, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6 बजे।

0: 6:23 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक फैजन को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम अब बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

Shock samachar sunye. Ali Roussai, gros caillou mein. Ali Roussai, gros caillou mein. 68 saal ke 68 years old Shri Prakash Singh Lachman. Shri Prakash Singh Lachman, jinhen log Prakash naam se adhik jante the, ki mrityu ho gayi hai. Inki arthi kal din ke 11 baje. कल दिन के 11 बजे इनके मकान आली रुसाई घो कायू से उठाकर बॉम्बू किश्मशान भूमि ले जाए जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 11 एम सेंट आन रोड प्लेन डिजेसी फ्लैक में 48 साल के 48 इयर्स ओल्ड श्री हेमंत कुमार सुमरा जिन्हें लोग नितिन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है इनके अर्थ कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी वर्षा सुमरा के मकान सेंट आन रोड प्लेन डिजेसी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 11 एम रॉय रोड आमिचे में 97 साल की 97 ईयर्स ओल्ड श्रीमती धमुरो भेरा पैदाशी नाम लो सर और जिन्हें लोग दादी बाबू नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है इनकी अर्थ कल दिन के 1 बजे इनके बेटे अविनाश डमुरो भेरा के मकान रॉयल रोड आमिचे से उठाकर आमिचे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM एवेन्यू डू डू लेस्पेरेंस पीटों में 78 साल के 78 years old, श्री सोनालाल सोमारू जिन्हें लोग ज्ञान सदा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे राजेश सत्यम रितेश सोमारू के मकान एवेन्यू डू डू लेस्पेरेंस पीटों से उठाकर कारू मौतें लेस्पेरेंस पीटों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM पायांकु रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बिमला गुप्ता पैदाशी नाम राम भोजू और जिन्हें लोग कविता नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है इनकी अर्थ कल सुबह नौ बजे इनके बेटे इरेश गुप्ता के मकान पायांकु रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर से उठाकर में जिनका उद्यमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: Unity Radio, 24 hours a day.
1: नमस्कार, CWA की CB की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। जी हाँ, CB की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। CB कटरबोन के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित करती हैं। CB कटरबोन के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित करती हैं। इलाका जो पाल्मा रोड से शुरू होता है, वेस्टर्न बाउंड्री, मैनिक एवेन्यू, लुचिस एवेन्यू, जैक्सन एवेन्यू, गोपाल सिंह एवेन्यू, रामदनी एवेन्यू, बासर रोड, कावलेसौर लेन, लासूस एवेन्यू और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 21 सितंबर 2026 के प्रातःकाल के 8:30 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। CB ग्राहकों को यह भी सूचित करती हैं कि जैसे ही मरम्मत कार्य समाप्त हो जाएंगे, तैसे ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। CB अपने सभी ग्राहकों के प्रति इन असुविधाओं के कारण क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी एक विज्ञप्ति CB की ओर से।
0: NBC Radio, 24 hours a day.
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: शाम के 6:30 बज चुके हैं दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सबको। आप लोग जुड़े हुए हैं RM3 रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ। और इस समय आप सुन रहे हैं नई सोच प्रोग्राम, आज रविवार 20 सितंबर 2026। जी हाँ, ये कार्यक्रम जहाँ बात होगी नए ख्यालों की, नए नज़रिए की और नए उन बदलावों की जो हमारी ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। मैं हूँ शाकौर यहाँ पर और आज फिर लेकर आए हैं कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे विचार जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच के नए दरवाजे खोलने के लिए। तो चलिए आज का पहला गाना सुनते हैं मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ में।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी से प्यार सीखना चाहिए, कैसे जीना है, कैसे हंसना है, कैसे खुश रहना है और दूसरों को कैसे खुश रखना है।

0: 6:53 हुए हैं। श्रोताओं, कहते हैं ना, अक्सर हम यही कहते हैं कि दुनिया बदलनी चाहिए, लेकिन असल बदलाव तब शुरू होता है जब हम खुद अपनी सोच बदलने के लिए तैयार होते हैं। चलिए, ये कार्यक्रम आपने सुना, आपने एंजॉय किया, बहुत धन्यवाद। ये गीत सुनिए, विपिन सचदेव की आवाज़ में जानम फिल्म से लिया गया, और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे आगे। 7 बजे के बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आपके नाम हम पेश करेंगे।
1: एक

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: दिलों की आवाज,
4: की आवाज,
3: दिलों की आवाज.
5: एक बार फिर से नमस्कार प्यारे दोस्तों, 7 बज चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं और एमफ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ. जी हाँ, आज रविवार 20 सितंबर 2026, और आज का दिन बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग अभी घर पर है, खाना बना रहे हैं. और ये एक ऐसा प्रोग्राम है दिलों की आवाज़ जहाँ बातें सिर्फ लफ्ज़ों तक नहीं बल्कि सीधा दिल तक पहुँचती है. मैं उषा कौर आपके साथ 9 बजे तक. कहते हैं ना, ज़िंदगी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हम कह नहीं पाते, कुछ यादों जो हम भुला नहीं पाते और कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं. आज का ये सफ़र उन्हीं जज्बातों, उन्हीं यादों और उन्हीं खूबसूरत एहसासों के नाम है. तो चलिए शुरू करते हैं एक और खूबसूरत मुलाकात दिलों की आवाज़, क्योंकि जो बात दिल कहें उसे आवाज़ मिलनी ही चाहिए. और यहाँ पर हमें सुन रही हैं माधवी और वो कहती है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से मोल रही रोशनी है. जी हाँ, गाना वो खास मांग रही हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, खासकर सितालू परिवार और रामधनी परिवार के लिए जो रहते हैं रिवियर्ज पोस्ट. और अगर आप लोग हमें सुनना चाहते हैं, आप किसी के लिए डेडिकेशन करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 4028070 और मैसेजेस आप भेज सकते हैं ऑन 5250620.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:24 हुए हैं दोस्तों। कुछ रिश्ते वक्त और दूरियों से कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे ज़िंदगी हमें कितना भी दूर ले जाए, दिल से दिल का रिश्ता बना रहता है और इसी एहसास के साथ रहना चाहता है। हम ना होंगे जुदे जुदा, ये प्यारा गीत आप सुन रहे थे। अभी चलिए अगला गाना हम चलाएंगे इंद्रानी जी के लिए, जो इस समय हमें सुन रही है फ्रॉम मेबर्ग। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। गाना जाता है आपके नाम और आपके परिवार के नाम।

0: दिलों की आवाज
1: चलिए दिलों की आवाज प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं 80s और 90s के खूबसूरत गाने और आप सुन रहे हैं RM Free Radio और मैसेजेस आप भेज रहे हैं ऑन 5250 6200 धन्यवाद साथ देने के लिए और आपको याद दिला दे कि इस समय हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं अगर आप लोग लाइव को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर खास गाना बोल राधा बोल जी हाँ फिल्म का नाम है बोल राधा बोल मूवी से लिया गया टाइटल सॉन्ग खासकर सचिन के लिए जो रहते हैं पॉम्पलमुस और इस समय हमें सुन रहे हैं साथ देने के लिए थैंक यू और यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव टिकटॉक पर चलिए उनके नाम हम लेते हैं यहाँ पर धनी जगरू जी हैं जो रहते हैं गुडलैंड्स और गाना आपके लिए शाविना जो रहती है रोजेल हेलो टू यू मनीषा नमस्ते नमस्ते शारदा लखनऊ और गुचिना गंगा भी सुन भी है हेलो ब्यूटीफुल और कावी कावी सैन जेम्स नोबिन है हेलो चले खूबसूरत गाना हो जाए आप सभी लोगों के नाम विक्रम सुरुज बाली आप रहते हैं ग्रांड बॉय चलिए गाना आप डेडिकेट कर रहे हैं प्यारी पत्नी के लिए पत्नी का नाम तो आपने नहीं बोला है कोई बात नहीं और यहाँ पर आयशा भी है हेलो टू यू आयशा सुनीता नमस्ते हेलो

और मनीषा जो है गाना डेडिकेट कर रही है पति विनेश, बच्चे जो है विधि वृष्टि पाटो, फैमिली जो रहती है मोडालबिया।

दिलों की आवाज़ प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं दोस्तों, और साथ दे रहे हैं धन्यवाद। और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे करिश्मा के लिए, अपने फैमिली के लिए गाना मांग रहे हैं रोहन।

0: Ryan Ramben जो रहते हैं वाले दे प्रेत और यहां पर हमें सुन रही है पायल हेलो टू यू नर्विश हेलो राजेश माया आपके नाम और गाना नौशिन के लिए थैंक यू सो मच शैलेंद्र गिल जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम कनाडा थैंक यू सो मच अभी अभी आप उठे हैं और दिन की शुरुआत हमसे कर रहे हैं इसके लिए हम आपको कहते हैं धन्यवाद और साथ दे रही है सुदेवी जी फ्रॉम वाक्वा नीलम जो है गाना मांग रही है अपने लिए बहुत धन्यवाद पूजा अभिषेक रोशन और आप है अरविंद काहुनेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और कुछ लोग हमें साउथ अफ्रीका से भी सुन रहे हैं और शशि गंगा दीन जी हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं और वो भी काम कर रहे हैं हमारी तरह भी कई लोग काम कर रहे हैं इस समय तो अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो बस हिम्मत रखिए बुंको आश्चर्यो और शशि जी जो है गाना मांग रही हैं गीतिका अपनी दो बेटियां गीतिका और खेमी के लिए और विद्या जी जो रहती है लाहौजा गाना मांग रही हैं अपनी बेटी के लिए जो बीमार है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए हम यही प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर वानी डाटोप्लो हेलो टू यू
1: दिलों की आवाज
0: और अजमेर खान थैंक्स फॉर लिसनिंग और दिनेश जो है गाना मांग रहे हैं अपनी प्यारी पत्नी वर्षा के लिए और साथ में ललिता जी हैं वो रहती है कालबास गाना मांग रही हैं अपनी प्यारी बेटी के लिए आशना और पोते विवेक के लिए चलिए मौसम आया है दोस्ती का लता जी और एसपी सुपर बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: सात बजकर 57 मिनट हुए हैं दोस्तों और आप हमें सुन रहे हैं थैंक यू सो मच और आया मौसम दोस्ती का चलिए ये जो सफ़र है आप लोग हम सफ़र बनकर साथ दे रहे हैं थैंक यू सो मच रानी जोई सूरी जो है वो हमें सुन रही है हेलो टू यू देवी बिहारी है और वो गाना मांग रही है एक दोस्त के लिए जो आज मॉरिशस वापस आए हैं और उनका नाम है महन जी तो आप महन आपके लिए गाना हम चलाएंगे और करिश्मा है थैंक यू सो मच करिश्मा आप है दिनेश हेलो टू यू हंसिनी वरुण रामधारी आपके लिए गाना हम चलाएंगे और मीला मुनेसोमी थैंक यू सो मच और आप है अच्छा अजमेर जो है गाना मांग रहे हैं अमीशा के लिए चलिए प्यारा गाना रोमांटिक गाना और यहाँ पर करिश्मा जो है अपने पति अमर के लिए गाना मांग रही है खूबसूरत गाना रोमांटिक गाना हम चलाएंगे ज़रूर और यहाँ पर वीर

0: Alexander Ramadou, आपके लिए DJ Singh Ram Singh from Suriname, Dinesh Amato, आपके लिए और संजीव पौयाग आपके नाम गाना चाहेगा, Vic Roy, Zahid Nisar, thank you so much for listening.
1: RM3 Radio, Radio, Radio.
0: चलिए शामा जी जो रहती है सैन जुलिये गाना मांग रही है अपने लिए और साधना कितारत आपके नाम भी हम गाना चलाएंगे दीप्ति गंधावरी आपके नाम आपकी फैमिली के लिए आपके दोस्तों के लिए और सूरज सजादा जी आपके नाम हम गाना चला रहे हैं और आप रहती है त्रियोले थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग चलिए अकेले हम अकेले तुम फिल्म से लिया गया कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में

आठ बज चुके हैं दोस्तों, 8:05 हुए हैं। रोमांटिक गाने आपके नाम, 80s और 90s के गाने। राजा को रानी से प्यार हो गया है, बहुत ही रोमांटिक गाना और खास गाना। हम अगला गाना चलाने जा रहे हैं, दागन श्वेता रविश प्रिशा लव शाह आपाडू फैमिली, और वो रहते हैं खुशनुआ। और साथ में यहाँ पर वाक्वा रंगभूमि ड्रामा अकादमी आपके लिए, आपके पूरे टीम के लिए गाना हम चलाएंगे। और साथ में ब्रह्मानंद बंधु जी, नमस्ते टू यू। शर्मिला डुलोरी आपके लिए, और गाना खास कर हम चलाएंगे लीना और आंटी लीना और भतीजी जो है त्रिशा के नाम, इंदिर नारायण एंजल के लिए। चलिए धन्यवाद ललित मोहन भट्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आवी जो है गाना मांग रहे हैं अपनी प्यारी बीवी के लिए, पूजा हेलो गाना वो मांग रही है अपनी मामा राजवानी के लिए। और यहाँ पर देवान नदीवाला फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया आपके लिए गाना, सितमगढ़ फिल्म से लिया गया ये प्यारा सा तराना सुनते हैं। और अनिता जी के लिए जो रहते हैं क्यू पिप, आपके लिए भी हम गाना चला रहे हैं। जो भी लोग हमें सुन रहे हैं घर पर बैठे बैठे, तो चलिए आप भी लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं 4028070, और मैसेजेस आप भेज रहे हैं 5250620।

0: दिलों की आवाज,
1: कहते हैं ना जीवन में एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही जरूरी है, यही अच्छे कर्म करते रहो और फल की इच्छा ना करो, ये कहते हैं ना। और चलिए ये खूबसूरत कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं। राजा सिसंग का आपके लिए हम गाना चलाएंगे, तानिया सी बालक, थैंक यू सो मच। और आप हैं निशा दिया।

गोकुल गाना वो मांग रही है अपने बेटे कुशाल और हस्बैंड राकेश के लिए और भाभी विशिका के लिए फ्रॉम आवी रेशमा पूरन नमस्ते आपको नीरम जो है हेलो और डालिया जो है गाना फ्रॉम रजनी हेलो टू यू रजनी गाना आपके लिए भी हम चलाएंगे और यहाँ पर हमें सुन रही है लवना लवना गाना वो मांग रही है अपने प्यार के लिए प्यार का नाम है गोलों तो गोलों जी आप काम कर रहे हैं केन्या में तो चलिए साथ देने के लिए थैंक यू सो मच और रूवेन जो है गाना मांग रहे हैं पत्नी चंद्रानी काहुपानन फ्रॉम फिल्म तेज आप चलिए फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है डेडिकेट हम कर रहे हैं ये गाना आप सभी लोगों के लिए पुवाना बी शर्मा आपके नाम किरण के लिए किरण माँ गाना मांग रही है अपनी बेटी लियाना के नाम और हरीश चुनी हेलो टू यू और खास गाना हम चलाएंगे करुणा गाना मांग रही है पति शुभी बेटियां हंसिनी और हंसिका के नाम और साथ में शेन और साथ में ये गाना जाता है खास इंसान के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं बहुत ही स्पेशल ये गाना आपके लिए एंजॉय करें दबंग फिल्म से लिया गया राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, आपका अपना प्रोग्राम। 8:20 हुए हैं और ऑन फ्री रेडियो आप सुन रहे हैं 80s और 90s के खूबसूरत गाने। चलिए, यहाँ पर शेन केनेडी है, आप सुन रहे हैं हमें, और गाना खासकर हम चला रहे हैं पूनम जी। गाना वो मांग रही है अपने हस्बैंड मनोज के लिए। एंजल माडवी गाना मांग रही है अपने हस्बैंड अवि, कल उनका जन्मदिन है। सो बेस्ट विशेज फ्रॉम बीवी माधवी और दो बेटे जो है अरुष एंड आयंश। प्रयाग श्वेता नमस्ते टू यू, और मनीषा जो है गाना मांग रही है अपने हस्बैंड रोशन और बेटी अवनी के लिए। और मीरा जी हमें सुन रही है फ्रॉम लंदन, क्या बात है। मधुबालानंद का जी बंधु, जी हाँ, नमस्ते टू यू। नेलू नमस्ते, और मीरा जो है गाना मांग रही है अपने हस्बैंड के लिए। जी हाँ नेलू, आपकी बेटी तनुश्री के लिए गाना हम चलाएंगे ज़रूर। और जय जो है इस लाइव को उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। चलिए, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। अंजलि गर्गू आपके नाम अगला गाना, और साथ में यहाँ पर थ्रियोले के रहने वाली, जी नहीं, क्यूपिप के रहने वाली अनीता जी जो हमें सुन रही हैं, आपके लिए नेक्स्ट सॉन्ग मैं खिलाड़ी तू अनारी फिल्म से लिया गया। 90s के सभी चाहने वालों के लिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: सारे 8 बज चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर जय जी जो हमें सुन रहे हैं, गाना वो मांग रहे हैं अपनी प्यारी पत्नी अंजू के लिए। और साथ में आप लोग ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। जी हाँ, 90s के गाने ऐसे ही होते हैं, 80s और 90s के गाने बस हमें उन यादों की तरफ फैले कर जाते हैं। अंजलि करगु, आपके नाम संजना तुताहाम, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आप है साबरीना, अनुष्का, रेशमा, हामतुला और रॉबर्ट, रॉबर्ट इज मिसिंग, नहीं रॉबर्ट माया को मिस कर रहे हैं। चलिए होप के माया आपको सुन रहे हैं समय। दिनेश गोपी, धन्यवाद साथ देने के लिए। पवन, आप है साम फाजा। और साथ ही साथ में योगिता जो इस समय हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच। और वीना है, वीना जो गाना मांग रही है अपने हस्बैंड के लिए, राजेंद्र कुवाल, आपके नाम गाना जाएगा यश फ्रॉम लिवरपूल इंग्लैंड, क्या बात है। और अनुष्का जो है गाना मांग रहे हैं अपने पति के लिए। और तरुण राम, हेलो टू यू, गाना मांग रहे हैं अपनी प्यारी मम्मी प्रेमिला किस्तु के नाम। अलादीन फिल्म से लिया गया। और उन सभी लोगों के लिए भी जो इस समय डिनर कर रहे हैं, तो आपको शुभ आहार। कीप ऑन लिसनिंग।

0: खुशियों की आवाज की
1: आवाज। जी हाँ, आपकी जिंदगी में कोई तो होना चाहिए जो बहुत खास है, और आपका जो वन एंड ओनली होता है ना। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं विशाल मेघकू। चलिए आपके लिए मेघकू। और यहाँ पर साबरीना गाना मांग रही है अपने हस्बैंड अभिषेक के लिए। और देविका किसनामा गाना मांग रही है अपने हस्बैंड विशाल और बेटा कार्तिक सानिश के लिए। हेलो सानिश। और काजल जो है गाना मांग रही है अपने बेटे 5 साल जो है और इस समय हमें देख भी रहे हैं, क्या बात है। हेलो टू यू। किरण आपके लिए गाना। और यहाँ पर वीर जो है, हेलो। चलिए राधा जी आप सुन रही है। और अश्विन सुकन धन्यवाद सुचिता कुलुमत आपके नाम। मानव लोलचंद हेलो टू यू। और यहाँ पर मेधा शमू। और सुचिता जो है गाना मांग रही है अपने बेटे लक्ष्य के लिए। और शोआना पाजू हेलो हाउ आर यू। बस आप सुन रहे हैं

0: दिलों की आवाज की आवाज।
1: चलिए पौने नौ बज चुके हैं और आप हैं इस समय जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन हमेशा की तरह दिलों की आवाज प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रोज की तरह। और आज रविवार की रात है और हम उषा कौर, मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभा रही हूँ। और रंजना जो है गाना वो मांग रही है श्रेया और मयंक के लिए। संगीता जी नमस्ते। विनय पेरियाग गाविन दे पियर फ्रॉम लिवरपूल। केव जो है गाना मांग रहे हैं अपनी प्यारी पत्नी के लिए, पत्नी का नाम तो नहीं लिखा आपने। दिव्या जीवन हेलो टू यू, दुष आपके नाम। और अमृता जगन्नाथ हेलो टू यू, नमस्ते। प्रवीण जी और साथ में साबिना के लिए, जी हाँ साबिना थैंक यू सो मच। ऐसे ही सुनते सुनते रहिए ये खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत सिलेक्शंस आपके लिए। मेजर फिल्म से लिया गया अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में।

तो चलिए दोस्तों, हर शाम की तरह आज की शाम भी अब अपने आखिरी मोड़ पर आ गई है और ज़िंदगी भी कुछ इसी रेडियो शो की तरह है। कब कौन सा गाना बज जाए, कौन सी याद को दिल को छू जाए और कौन सा पल हमें हमेशा के लिए याद रह जाए, तो कोई बात नहीं, आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। ये गाना खासकर कृष मोहन की ओर से और गाना वो मांग रहे हैं अपने जीजू के लिए, एस बी के नाम, और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जिन्होंने हमारा साथ दिया है, नाजी मानस के लिए, और आप हैं अनिता प्याटब, सुनीता, अमृता जगाना, दाविद, थैंक यू सो मच इस गीत के साथ, और खासकर नाविद के लिए भी जो इस समय हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। कल होना हो, कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, लेकिन आज जो है हंसते मुस्कुराते जाइए। और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला, आपने साथ दिया, धन्यवाद। उषा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

के 9:10 हो गल बा सभी श्रोता लोग तोहर पता बाते कि सबसे बढ़िया चीज़ का है जीवन में तोहर प्रति सब कोई अच्छा सोचिया तोहर आदर करिया। नमस्कार श्रोता लोग, कैसन हवा भोजपुरी तरका तोहर खातिर रात के 11 बजले और उषा तोहर संगे साथ देव जा और भोजपुरी तरका तोहर बढ़िया प्रोग्राम तोहर खातिर रोज चलेला और आज भी तोहर सेवा में हम आज चलल बाते। नंबर वा घुमा हुआ कत सौदे का तो सैक चला किशोर किमिया के गावल गीत जितना लोग हमने के सुना जुड़ चुकल जुड़ल बा हमार संगे तो चला गाना तो हर

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:22 हो गल बा छोटा लोग सब गीतवन के पीछे एगो संदेश रहेला एहे चाहेला हमने के समझे के कलाकार के मेहनत बहुत लगेला अपन गीत निकाले के ओ लोग के हौसला बढ़ाए के चाहेला हमने त ओ लोग के गीतवन भोजपुरी तर का प्रोग्राम में त चलेला सा चलाइला सा त चला अगला गीत संगीता जी खातिर जन हमने के सुनता क्यू पिप से साथ देने खातिर धन्यवाद चला गाना तोहर खातिर और परिवार खातिर

चले श्रोता लोग एक के बाद एक बढ़िया गीतवन के बहुत चार और बातें रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन की लहर पर यह तो हम पसंद के कमाल हम तो बोलवे करब की तो हो लोग हवा जा एकदम कमाल तो चला 9:27 हो गए बा और अगला गीत देवीना खातिर जो काम करा था विक्टोरिया हॉस्पिटल में और ये गाना एकर खातिर एकल संगतिया खातिर जो ये बखत साथ मिलकर काम करा था तो चला बॉन कुराज

रात के 9:50 हो गल बा श्रोता लोग कितना कोई आगे रात के रेडियो नहीं सुना टलन जा पर सबसे भोजपुरी तड़का के सिलसिला शुरू होल तब से त हमनी के श्रोता गण रोज के रोज अपन रेडियो के भीरी आके साथ देवेला जा एकर खातिर तोहरा दिल से धन्यवाद देवा तवन जा। और अगला गीत इंद्रानी जी खातिर जोन हमनी के सुनाता मेबग से चला गाना तोहर खातिर पति राजन खातिर और सभी रूपल परिवार खातिर।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 10:02 हो गल बा हमनी के संस्कृति तो बहुत पावन है देखवा तो गणपति पूजन के बाद अक्टूबर महीना में दुर्गा पूजा आरंभ होता तोरा हमेशा मौका मिलेला अपन गलती सुधारे के बार बार गलती कर बता ईश्वर कभी माफ नहीं करिया तो ख्याल रखिया कि एक अच्छा मनुष्य बने कि यही है हमने के लक्ष्य तो चला अगला गीत नीरज गुप्त मधु के गावल गीत और ये गाना नीरव खातिर जो रहिला कौछ मिलते फ्लक और ये वक्त गाड़ी चलावता तो चल सावधानी से और ये गाना तुहर खातिर और मंगेतर कृष्टि खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:17 हो गल बा छोटा लोग हरदम बोलीला सा कि तोरा पॉजिटिव चाहेला रहे के यानी सकारात्मक सोच चाहेला अपनाए के फिर भी बहुत कोई इस साथ सब बात समझते हुए भी चिंता से अपन के कमजोर बना देवेलन जा ये जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आवेला और हार मानकर बैठ जाइबत समझा हो जे तो हर जीवन निरर्थक बन जाए त हिम्मत जूता के मुसीबत के सामना करा जा चला अगला गीत सुना जा भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज की गावल गीत और ये गाना पृथ्वी खातिर जोन रहिला गुडलैंड और बखत सुनाता ये गाना एकर खातिर और एकर पिताजी ज्ञान दत्त खातिर

भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 10:40 हो गए बा श्रोता लोग भोजपुरी तड़का तुहर खातिर और ये गाना रोशन सरासन के गावल गीत वंदना हमार सुना और ये गाना विनय खातिर और ऊ रहिला रोजिल ई बखत हमनी के सुनाता तो चल विनय जी ये गाना तुहर खातिर और हमारे तमाम सुनने वालों खातिर

भोजपुरी तड़का। रात के 10:52 हो गल बा रेडियो मोरूशस और रेडियो मनोरंजन एकमात्र ऐसन चैनल बा श्रोता लोग जन में भोजपुरी कार्यक्रम में चलेला भोजपुरी गीतवन खेलते रहेला। खाली भोजपुरी ही नहीं बल्कि अन्य पूर्वी भाषा भी जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, हक्का, मंडारिन दहाई चैनल के हमेशा साथ देते रहिए जा और वादा कर तई रहल तोहर खातिर भोजपुरी तड़का आज्ञा दीहा और बहुत जल्द मिलब जा। अपन ख्याल रखिया जा। नमस्ते और शुभ रात्रि।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी दिल बस इतना चाहता है कि वक्त थोड़ा सा रुक जाए और हम लौट चले उन हसीन लम्हों में, जहाँ हर गीत एक एहसास था, हर सुर एक याद था। और आज के इस खूबसूरत सफ़र में हम लेकर आए हैं वही अमर बॉलीवुड के नगमे, जो सिर्फ सुनाई नहीं देते हैं, दिल के किसी कोने में महसूस भी होते हैं। तो बस आप तैयार हो जाइए गिनिशा का साथ देने के लिए इस खूबसूरत से शो में, जिसका नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनमें हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बस जाते हैं। पहला प्यार, पहली मुलाकात, माँ की मुस्कान, दोस्तों की मस्ती, सब कुछ इन गीतों के साथ जुड़ा होता है। तो आज अपने दिल को बस ज़रा थाम लीजिए और दिल का दरवाज़ा खोल दीजिए और इन यादों को फिर से जी लीजिए हमारे साथ। मैं हूँ निशा जो आपका साथ दे रहे हैं और ये पुराने बॉलीवुड संगीत का एक और हसीन सफ़र लेकर आए हैं, खासकर आप लोगों के नाम।

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वैसे देखा जाए तो कुछ आवाजें ऐसे होती है ना जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। वो गीत जो हमारे माँ बाप ने गुनगुनाए होंगे किसी जमाने में, जो हमने बचपन में रेडियो पर सुने और जो आज भी दिल को उतने ही सुकून देते हैं। आज की ही रात उन्हीं अनमोल नगमों के नाम है। अगर आप कहीं सफर में हैं, घर पर हैं या काम पर हो, बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर लीजिए।

हर गाना अपनी एक कहानी लेकर आता है और हर कहानी किसी ना किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। शायद आज जो गीत हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उससे जुड़ी कोई याद आपके दिल में है, बिल्कुल बसी हुई है आपके दिल में। हो सकता है वो किसी अपने की याद हो, किसी अधूरी मोहब्बत की या किसी खूबसूरत बचपन की। तो चलिए आज सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, अपनी यादों को फिर से जी लेते हैं इस खूबसूरत से शो में। ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

0: करेगा।
1: रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है दोस्तों, एक गीत बजता है और हजारों दिल एक साथ मुस्कुराने लग जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं वो गीत जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड को अमर बनाया बल्कि हम सभी के जिंदगी को भी सुरों से भर दिया है। तो जहाँ भी है बस कुछ देर के लिए दुनिया की टेंशन को साइड में रखें और इन हसीन नगमों के साथ अपने दिल को सुकून दीजिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। इतने खूबसूरत खूबसूरत नगमे हमने आप लोगों को सुनाया है। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर गिनेशा टू से गुड बाय टू यू। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के इस खूबसूरत सफर में ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस। अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनो।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: NBC Radio, 24 hours a day.

0: You're listening RM3 Radio.
1: Radio.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: ए क्या बोलती तू,